0: House is convened. I don't think Congress party or opposition party are very serious about the House. They are busy protesting all the time. And over the years I've seen, I've been in Parliament for such a long time, the Congress MPs have now come to the term that they are elected only to protest in the House. They forgot now. Their leader doesn't speak. They don't believe in debate and discussion. And when we pass the bill, because it is necessary, they accuse us that, oh, there is not enough time for debate and discussion. And when we give time, they don't come to the House.
1: So, you know, you are the Parliamentary Affairs Minister, sir. Isn't this now your responsibility to reach out to your friend Rahul Gandhi? You know, I believe both of you talk on fitness and, you know, that's key with the two of you. Reach out to him, convince him, convince the opposition, let them sit through Parliament, debate these issues on the floor instead of the street. After all, it's the temple of democracy.
0: No, last time, in fact, I had many times discussed with Sri Rahul Gandhi. The last discussion we had was in his room where we sat for close to 1 hour. Normally, we don't sit for that long, but that day, his sister Priyanka Vadra was also sitting there. So, we had a long discussion. Nothing, you know, a kind of uncomfortable situation. We had a very good discussion. But at the end of the day, if the leader of opposition do not agree to participate in the proceedings of the House or let the parliament function smoothly, all kind of talk becomes unproductive. I am ready to talk to him. We speak over the phone and all. It is my duty as a Parliamentary Affairs Minister to bridge the gap between the opposition and the ruling party. And you can ask the other opposition MPs, whether in the Business Advisory Committee meeting or in the one-to-one, I always reach out to the opposition parties. I am a very simple man. I don't just have any ego in my mind. I can do anything to ensure that they cooperate. But beyond a point, if they have decided that they don't want to let the parliament function smoothly, then we can't, become a victim of the situation. If the budget has to be passed, it has to be passed. Aaj aapka kharcha kahan se nikalega? Ye to India Today ka kharcha bhi to budget se pass karne ke baad to market mein chalega, tabhi to aayega. To salary kahan se aayega? To jo constitutional obligation has to be maintained. If we have to pass a bill, we will pass the bill. Whether they cooperate or not, we are in the government, it is our duty. But at the same time, it is my duty to ensure that they come on board. If they don't come on board...
1: If they are not coming on board, if I may, abhi 2026 hai, agla chunav 2029 mein hai, to kya 3 saal aise hi vivad chalta rahega?
0: Aisa nahi, dekho, Rahul ji, ek to aap log headline mein news chala dete hai ki house is adjourned, house is disrupted, or there is no business transaction in the parliament. Aisa nahi hai. Morning mein jo disturb ho jata hai, to wo sochte hai ki din bhar aisa hai. Aisa nahi hai na, phir aadha ghanta ka baad house milte hi hai. To phir house chalta hai. To house jab chalta hai, to business transaction hota hai. To what I'm saying is, even if they don't cooperate, we can't make the journey of the country stand still and without any kind of transaction of business. Aisa to kar nahi sakta na. It is obligation on the part of the government to let the parliament transact the business, because we have to serve the people. We are here for the people. The opposition cannot hijack the entire parliamentary system due to their agenda. They can't do that.
2: Let me draw your attention, Minister, back to delimitation, because it seems the window is closing.
0: She is talking about delimitation. Might be interested in the women reservation. Politics mein aayega.
2: Nahin, sir, we are journalists only.
0: Nahin, there are many journalists who became very successful politicians.
2: True. But to ask you that...
0: Then I'll be happy if you get elected someday, you enter into politics.
2: But sir, journalist hi chhod dijiye. My question is, the window is closing. And why it seems, because if it has to happen before 2029, it will need to happen in December, because then early next year is election, president election. So your window is now till December. Do you think it will happen till then?
0: No, that's true. When we are closing towards 2029, every month or every day is important for us. And as I said, it is a commitment to ensure that 33% reservation for women is implemented in 2029
2: election. Do you have the numbers?
0: I think whenever we take up this matter, we will have the number. Last time, we could not manage the number, but I think many MPs have realized that we should pass this necessary amendment as soon as possible.
1: Achha, Minister, ye bataiye, ye jo is samay protest chale hi ja rahe hain, kya, as Parliamentary Affairs Minister, will you reach out to whether it's Rahul Gandhi or other opposition leaders, ki chalo mil baith ke baate karte hain, sort out karte hain, facts public domain mein sab dalte hain, taki desh aage chal sake bina hinsa ke, bina agitation ke.
0: Aap kaash opposition party bhi aise sochte hain jo aap itna aasani se bol rahe hain. Hum to chahte hain ki hum opposition ko baat kare hain. Ab opposition mein kuch log hai, baar baar to main naam nahi lena chahunga, वो नहीं मानने के लिए अपने दिमाग में सोच बना लिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं बट ऐसा नहीं लगना चाहिए कि गवर्नमेंट इज नॉट मेकिंग एफर्ट्स आई एम स्टिल मेकिंग एफर्ट्स यू कैन आस्क द सीनियर कांग्रेस लीडर्स मेरे घर में आते हैं चाय पीते हैं और मैं सिर्फ नहीं ऑल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री का ये ड्यूटी होता है लेकिन मैं लेकिन एक अपील तो करूंगा कि इस तरह का निगेटिव पॉलिटिक्स आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं ये तो आप मान के चलिए और मैं आज तक ये इंडिया टुडे का इस प्लेटफॉर्म से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो ऑपोजिशन पार्टी कर रहे हैं देश को बर्बाद करके तबाह करके जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट के माध्यम से देश चलाना चाहता है इस तरीके से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं ये कोई तरीका नहीं है हम लोग पारंपरिक जो तरीका है ट्रेडिशनल कन्वेंशनल जो मेथड है हम उसी को मेंटेन करेंगे और हम लोगों का बीच भी जाएंगे डिसाइड करेगा पीपल ऑफ इंडिया ये 2-3 हजार बेड के सड़क पे देश का भविष्य तय नहीं कर सकते
2: बट मिनिस्टर बिकॉज यू आर वन ऑफ द मोस्ट रीजनेबल मिनिस्टर्स दैट एंड यू टेक एवरी क्वेश्चन आई'd लाइक टू आस्क यू दिस क्वेश्चन बिकॉज यू नो फॉरगेट अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज देर आर अ लॉट ऑफ द यूथ दैट हु आर वॉचिंग दिस ब्रॉडकास्ट सम ऑफ देम माइट बी इंक्लाइंड टूवर्ड्स द कॉज ऑफ दिस प्रोटेस्ट वॉट इज योर मैसेज टू देम बिकॉज They don't ally with the political party. They are allying in their head with the cause. And they don't want to hear the word anarchist being told to them.
0: Sometimes I feel sad that some of the youth or some people who I never expect to misinterpret the system or the provisions, I wish we could convince them. Just film industry, maybe maine kuch chehre dekhe. Film mein kaam karte hain. वो एबीसी नहीं मालूम दिन भर कमेंट करता है मैं जब एक दिन वंदे मातरम को लेकर के
2: नसीर साहब का बात कर
0: नहीं कई लोग हैं मैं नाम क्यों लूंगा वो पार्लियामेंट में वी डिबेटेड ऑन वंदे मातरम और वंदे मातरम ऐसा एक राष्ट्रगान है जिसको गा गा करके लोगों ने आजादी प्राप्त किया और फिल्म इंडस्ट्री में एक आदमी जो बोल रहे हैं कोई म्यूजिक वगैरह बजाते हैं वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में वंदे मातरम पे एक दिन चर्चा क्यों कर रहे काम नहीं है क्या पार्लियामेंट का उसको पार्लियामेंट का एबीसी नहीं मालूम और बॉम्बे में बैठ करके वो इस तरह का कमेंट पास करते हैं अभी भी कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं मैं फिल्म इंडस्ट्री इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा चर्चित चेहरे होते हैं
2: बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं
1: हम लोग और इसमें मुंबई में है भी हम लोग
0: तो मेरा ये कहना है कि आप क्रिटिसाइज करना चाहिए मगर जान के विदाउट नोइंग द रियलिटी विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रोविजंस ऐसा हवा में नहीं करना अगर आप जेन्युइनली क्रिटिसाइज करना चाहते हो तो कर सकते हैं सपोज मैं कहता हूं कि यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हम कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है कि करना चाहिए उसको नहीं करना चाहिए बोलना भी ठीक है उसको ओपिनियन हो सकता है उस टाइप का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को मैं मान सकता हूं लेकिन फैक्चुअली जो जानकारी है ही नहीं और बिना मतलब कमेंट पास कर रहे हैं उनको मालूम नहीं है हम लोग जिंदगी पूरा दे करके सेवा करके यहां पहुंचे हैं मैंने कहा ना ये लोग सोशल मीडिया में हीरो बन जाते हैं मिलियंस फॉलोवर होते हैं आजकल तो नेगेटिव न्यूज खूब चलते हैं आप एक ब्रिज बनाने में 2-3 साल लगता है और ब्रिज इनॉग्रेशन को आप सोशल मीडिया में पोस्ट करोगे तो 200-300 व्यूज आएगा उस ब्रिज को तोड़ देगा तो मिलियन व्यूज आ जाते हैं। तो निगेटिव करने से आपका व्यूअरशिप बढ़ सकता है लेकिन ये परमानेंट व्यूअरशिप नहीं होगा।
1: आखिरी 30 सेकंड, क्या सरकार बैकफुट पर है इस समय इतना जो प्रोटेस्ट और एजिटेशन चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज का भी, कॉकरोच जनता पार्टी का भी और औरों का भी?
0: बैकफुट का तो सवाल पैदा ही नहीं होते हैं। हम लोग बहुत ही हम्बल ह्यूमिलिटी के साथ बहुत रेस्पेक्टफुली लोगों को बात करते हैं लेकिन हमको डरा धमका करके अगर कुछ करोगे हम नहीं मान सकते क्योंकि हम अपना मर्जी से सरकार में नहीं आया है, हमको भारत के जनता ने सत्ता में बिठाया है। नरेंद्र मोदी जी को 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का आशीर्वाद के साथ प्रधानमंत्री बनाया है। ये किसी का मोहताज नहीं है कि ये प्रोटेस्ट करने से हम कमजोर हो जाएंगे। अगर संविधान से आप पूरा प्रेरित है तो आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन संविधान का किताब पकड़ेंगे, संविधान का खिलाफ काम करेंगे हम नहीं मान सकते। हम सच्चाई को आगे मानते हुए आगे चलेंगे, देश सेवा करेंगे। अभी इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इस बढ़ते हुए हिंदुस्तान का जर्नी को, विकसित भारत को जर्नी को रोकने के लिए विदेश में कुछ ताकते हैं जो खुल के बोल रहे हैं, कुछ लोग विदेश से यहां आता है, कुछ अपना इंडियन है विदेश से ट्रेनिंग लेकर के यहां आता है, अराजकता फैलाते हैं। हमारा देश में ही कुछ लोग बैठे हुए हैं जो हमारा देश का तरक्की को नहीं देख सकते हैं। ये जो तत्व मिले हुए हैं उसको कैसे निपटना है हमारा सरकार जानता है।
1: सर ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं
0: बड़ी बात, छोटी बात नहीं, सच्चाई बात है।
1: बाहर से ताकत है देश को तोड़ने के लिए एजिटेशन
0: कई है, जो भी देश तरक्की करता है तो उसको आग जलने वाला बहुत होते हैं। इस वक्त इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड।
2: जो आप बाहर की ताकतें बोल रहे हैं सर,
0: वो बाहर की ताकतें आप लोग सब जानते हैं, आप लोग पत्रकार हैं पूछ रहे हैं, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कौन लोग हैं जो विदेशी ताकत हमारे खिलाफ काम करते हैं।
2: यू आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, हैव यू रेड द एलन मस्क ट्वीट?
0: इस पे मत जाइए, वो सब अपना अपना बिजनेस इंटरेस्ट में कौन क्या काम कर रहे हैं मैं उस पर आज नहीं बोलूंगा।
2: अच्छा।
0: मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि देश के बाहर और देश के अंदर इंडिया का सक्सेसफुल ग्रोथ स्टोरी को तबाह करने के लिए बैठे हुए हैं कई लोग, उसको हम कामयाब होने नहीं देंगे।
2: लास्ट क्वेश्चन सर, यू लाइक आई सेड यू आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, यू बीन क्रिटिकल ऑफ इट बट योर ओन स्टोरी इज गोइंग टू मिलियंस ऑफ व्यूज। द लास्ट टाइम वाज दिस वन स्टोरी वेयर यू हैड जंप्ड इनटू अ रिवर इन अरुणाचल। इज देयर, व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान? आर यू, बिकॉज यू आर एन आउटडोर पर्सन, यू इंडल्ज इन अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स?
0: नो, दैट्स राइट, आई एम अ वेरी नेचुरल मैन, आई कैन नॉट just act just for the sake of pleasing people. I do whatever I like. I can't lie. I live a natural life. So if the Congress party or opposition people try to make certain accusation or some kind of a unpleasant comment about me, it's not going to affect. I'm a natural person. So even in the midst of my busy schedules and other duties, I live my life king size. I go to jungle, I go to mountains, I swim, I can drive, I can do anything, whatever gives me pleasure. I'm a natural man. So people have understood by now that I live a natural life and I'm a very genuine human being. I don't harm people, I don't speak ill about people. Without any reason, I can counter, okay. But on my own, I don't do anything to harm other people or to kind of sadden other people with my comments.
2: And you take all questions completely without cross-checking one question, and that Gaurav and I can vouch for. Thank you, sir.

भारतवर्ष का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर्स है और जंतर मंतर का क्षेत्रफल लगभग 4 किलोमीटर का है। तो भारत की कहानी जंतर मंतर की कहानी नहीं है। जंतर मंतर में जो हो रहा है, टीवी में जो दिख रहा है और कुछ सोशल मीडिया के हैंडल में जंतर मंतर को दिखाया जा रहा है, वो भारत की कहानी नहीं है। भारत शांत है, भारत सुशासन के साथ आगे बढ़ रहा है, मगर दिल्ली के एक कोने में कुछ अराजक तत्व जिस प्रकार से अराजकता कर रहे हैं, वह कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। मगर आज मैं आपको कह सकता हूं कि आज द एनार्किस्ट्स हैव फेल्ड। जो अराजक तत्वों का फ्लॉप शो हम देख रहे हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है।

भारतवर्ष का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर्स है और जंतर मंतर का क्षेत्रफल लगभग 4 किलोमीटर का है। तो भारत की कहानी जंतर मंतर की कहानी नहीं है। जंतर मंतर में जो हो रहा है, टीवी में जो दिख रहा है और कुछ सोशल मीडिया के हैंडल में जंतर मंतर को दिखाया जा रहा है, वो भारत की कहानी नहीं है। भारत शांत है, भारत सुशासन के साथ आगे बढ़ रहा है, मगर दिल्ली के एक कोने में कुछ अराजक तत्व जिस प्रकार से अराजकता कर रहे हैं, वह कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। मगर आज मैं आपको कह सकता हूं कि आज द एनार्किस्ट्स हैव फेल्ड। जो अराजक तत्वों का फ्लॉप शो हम देख रहे हैं, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है।

0: कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति को सड़क की लड़ाई में घसीटने का प्रयास किया गया, मगर एक नालायक नेता ने राष्ट्रपति महोदया को सड़क की लड़ाई में घसीटने की कोशिश की है। द एनार्किस्ट राहुल गांधी ट्राइड टू पुल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द एनार्किज्म विच ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू कंडक्ट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया, ये कहते हुए कि हम कल कुछ वोट चोरी के विषय को लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गए थे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी मान गई कि हम जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। अब देखिए, बेसिक प्रोटोकॉल भी राहुल गांधी को समझ में नहीं आता है कि आप कोई मेमोरेंडम लेके जाते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट्स द मेमोरेंडम, ये बेसिक प्रोटोकॉल है भारत के संविधान का, भारत के लोकतंत्र का, इसीलिए तो भारत का लोकतंत्र विराट है। मगर आपने कहा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसी सांस में कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कुछ एविडेंस है तो वो भी दीजिए। क्यों एविडेंस क्यों नहीं लेके गए थे? एविडेंस होगा तभी तो लेके जाएंगे।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
2: You are watching India Today.
3: A very good morning to all our viewers. It's Sunday morning. You're watching India Today. I'm Anjali Pandey, and there has been a massive escalation in the Houthi and Saudi Arabia conflict. We'll be getting you all those details. But before that, let's take a look at the headlines this morning. Dramatic escalation in West Asia. Saudi Arabia's Riyadh airport struck for a third time in a week. At least 12 people killed and over 300 injured. Flight operations suspended briefly. Saudi Arabia vows to fight back. Cockroaches refuse to back down despite October 10 police crackdown in Delhi. CJP announces fresh protests from 10 a.m. today, even as Abhijit Dipke, Saurav Das and Ashutosh Ranka remain in custody. Major restrictions in the capital lifted. United Nations body condemns Delhi detentions and curbs, says they are concerned by the crackdown. India hits back, calls remarks as unwarranted interference in the country's internal affairs.

0: self to be the citizen. We will be the happiest person to help anybody who is a genuine Indian, but somehow deleted or due to change of address or some error in the names and all removed. But can we get, you know, get into the electoral roll again? So tell me anybody, a genuine person, genuine Indian who has been removed and not being able to get re-enrollment. Tell me.
1: So that's the war of words that has now erupted between the opposition and the government over the showdown and the protests that are being staged by the opposition leaders in the national capital against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, demanding his resignation. And Rahul Gandhi also slammed the police action that was taken yesterday during the protest. Even before the protest, a total of over 7,000 protesters were detained by the Delhi police on October 10th itself during the protests in the national capital. And in fact, not just the CJP supporters and workers, but several opposition leaders, including three former chief ministers, were also detained by the cops. And Rahul Gandhi accused the Modi government of destroying democracy and attacking the future of India's youth. Some more news coming in. Bangladeshi protest group comes out in support of CJP day after detention of its core team. A group involved in the coup against Sheikh Hasina has slammed the detentions. Their statement reads, "To the youth and democratic forces of India, we stand in firm solidarity with the young people of India, demanding electoral accountability and defending their democratic rights. Recent detentions of peaceful protesters, organizers and journalists in New Delhi, alongside internet suspensions and restrictions at Jantar Mantar, directly threaten fundamental freedoms. Concerns regarding electoral integrity and institutional independence require transparent answers, not barricades and censorship. This struggle is not yours alone. From Dhaka, we stand with you as friends, bound by a common demand for accountable power, democratic institutions and human dignity." Remember, this is the same group that was responsible for the fall of the Sheikh Hasina government in Bangladesh, which has now come out in support of the CJP just a day after mass detentions in the national capital. And it has slammed those detentions and has also extended firm support to the CJP and also what it calls democratic forces of India. It says that we stand in firm solidarity with young people of India, demanding electoral accountability and also defending their democratic rights. And recent detentions of peaceful protesters, organizers and journalists in New Delhi, alongside internet suspensions and restrictions at Jantar Mantar, directly threaten fundamental freedoms. Concerns regarding electoral integrity and institutional independence require transparent answers and not barricades and censorship. This struggle is not yours alone. From Dhaka, we stand with you as friends, bound by a common demand for accountable power, democratic institutions and human dignity. That's what the statement by this Bangladeshi group that has come out in support of the CJP says. So that the group that was behind the Bangladesh anarchy has now backed the CJP protest. The same group that was responsible for the fall of Sheikh Hasina government now says that it stands firmly with the CJP in these protests and in demanding accountable government. And it has also slammed the mass detentions and also the crackdown by the cops and also the suspension of the internet in the national capital. So the battle over alleged electoral roll irregularities is set to intensify in the national capital, with the Cockroach Janata Party vowing to resume its protests at Jantar Mantar at 10 a.m. today. Meanwhile, Delhi continues to function with metro services, internet connectivity, railway stations, shops and restaurants and liquor outlets remaining open. However, traffic diversions remain in place on key routes across central Delhi as security arrangements continue. CJP has declared it will not back down, demanding Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar's resignation and accusing the government of using detentions to silence dissent. The defiance comes a day after a major opposition mobilization ended in a series of detentions, including those of Mamata Banerjee, Arvind Kejriwal, Pinarayi Vijayan and several left leaders. The opposition, too, has doubled down, insisting the fight will continue despite police action. Meanwhile, a Supreme Court special bench is scheduled to hear a contempt petition. alleging excessive restrictions, blockages of metro and rail services, and detentions in the national capital.
2: साथियों, आज हम जंतर मंतर क्या मांगने गए थे? ज्ञानेश कुमार ने जिन 12 करोड़ वोटर्स का वोटिंग का अधिकार चुराया, उनका अधिकार वापस मांगने गए थे। फिर भी मोदी शाह के इस तानाशाही सरकार ने अभिजीत डिपके, सौरभ, आशुतोष के साथ साथ सभी स्टूडेंट लीडर्स और वॉलंटियर्स और जनता को डिटेन किया। उनको लगा होगा कि आज डिटेंशन करेंगे तो डर के घर वापस निकल जाएंगे, पर मोदी शाह का यह डर दिखाता है कि हम आधी लड़ाई ऑलरेडी जीत चुके हैं और एक नई लड़ाई की शुरुआत है। मोदी शाह को हम कहना चाहेंगे, जिस तरीके से हमने पिछली बार आपका अहंकार चूर चूर किया था, इस बार भी हम अहंकार आपका चूर चूर करेंगे। आप कितने भी कोशिश करो, कितना भी प्रेशर डालो, कितने भी लोगों को डिटेन करो, फिर भी हम जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं लेंगे तब तक घर वापस नहीं जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सभी को कहना चाहूंगा, कल फिर से हम लोग सुबह 10 बजे जंतर मंतर की ओर कूच करेंगे। आप सभी को बड़ी संख्या में जंतर मंतर की तरफ आना है और जहां पे आपको दिल्ली पुलिस रोकेगी वहीं पे आपको आपका जंतर मंतर बनाना है। जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देगा, जब तक ज्ञानेश, जो कि देश का सबसे बड़ा गद्दार है और सबसे बड़ा एंटी नेशनल है, वो इस्तीफा नहीं देगा, तब तक हम जंतर मंतर से हिलेंगे नहीं।
3: ये लड़ाई सरकार के अस्तित्व की लड़ाई है, बिकॉज अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा देते हैं तो ये सरकार जिस तरीके से वोट चोरी करके चुन के आई हुई है वो वापस से दोबारा जीत नहीं पाएंगी। इसलिए सरकार ज्ञानू को बचाना चाह रही है। आज आपने देखा होगा सरकार ने दिल्ली में इमरजेंसी लागू की, इससे देश की हर जगह पे बदनामी हो रही है, विदेश में बदनामी हो रही है कि एक ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा देने के लिए, जिसने वोट चोरी की है, जो सबके सामने आ चुकी है, उसको बचाने के लिए मोदी शाह की जोड़ी पूरी तरीके से लग चुकी है और उसने आज पूरे दिल्ली को इमरजेंसी में उन्होंने डाल दिया था। फिर भी ये लंबी लड़ाई है, यह आज नहीं खत्म होगी, लेकिन जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते तब तक हम जनता में आते रहेंगे और ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेते रहेंगे।
4: पोस्टर था सेव इंडिया सेव डेमोक्रेसी, कोई पार्टी का नाम भी नहीं था, तो पुलिस आके बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकता है, इधर में बैठने नहीं सकता, नो बॉडी इज अलाउड टू सीट ऑन द रोड। हम लोग तो रोड में नहीं बैठे, हम तो हमारा घर का सामने बस स्टैंड में बैठा कि आप लोग जाने नहीं देता, हम उसको सपोर्ट करने के लिए आया है। 2 घंटा रास्ता में घुमाया, हमारा एक डायबिटिक पेशेंट है, 1.5 घंटा का बाद वो वॉशरूम जाने चाहते थे लेकिन उसको वॉशरूम जाने का मौका भी नहीं मिला। हम लोग बाहर में बैठा बिकॉज वी आर किडनैप, आई कैन नॉट से मीन्स आफ्टर दैट व्हेन वी एंटर दिस इट इज अ इलीगल डिटेंशन।
1: So the CJP has vowed that the protests will continue even today. The protests will begin at 10 a.m. today. It remains to be seen what unfolds in the national capital, though the restrictions, the major restrictions have been lifted, but traffic diversions are still there in place. We'll get you all the details and the updates from the national capital. But with that, it's a wrap on this bulletin. More news and updates will continue on the other side. Stay with us.
5: Are watching India Today.
6: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ, पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
7: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेंको गहने।
8: So many payment apps, but which one is safe?
9: Then switch to Bheem. It is completely safe and reliable. Keep getting rewards as well. You can also get 40 rupees cash back on your first payment above 40 rupees. Use Bheem app to pay.
10: It's the Mahi way.

0: भाई मैं जापान में हूँ और बाथरूमों को इतनी इज्जत दे रखी है इन लोगों ने कि मैं इमोशनली हो जाती हूँ एवरी टाइम आई एंटर एनी वॉशरूम. छोटे से छोटा बाथरूम हो, बड़े से बड़ा बाथरूम हो, प्लीज जस्ट सी.
1: An Indian content creator traveling through Japan was impressed by the thoughtful features in the country's public bathrooms.
2: उसके बाद जितनी भी मम्मियां हैं जो अपने बच्चों के साथ आई हैं बाथरूम करने, उनके लिए एक सीट है कि बच्चा आराम से उस सीट पे बैठे और मम्मी आराम से लैट्रिना लैट्रिना खेले, जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी बुरी बात भी है क्योंकि लैट्रिन टाइम इज मी टाइम, बट सो थॉटफुल. अगली चीज देख के आपका दिमाग खराब हो जाए.
1: अंकिता साहिगल हाईलाइटेड फैसिलिटीज डिजाइन टू मेक वॉशरूम्स मोर प्रैक्टिकल एंड कम्फर्टेबल फॉर वुमेन, मदर्स एंड चिल्ड्रन बियॉन्ड देयर क्लीनलीनेस.
2: कपड़े चेंज कर सकते हो, मान लो नीचे पानी गिरा हुआ है या नीचे गंदा है तो आप इस पे खड़े हो जाओ.
1: A US based woman has shared an emotional glimpse into motherhood at 40, documenting her life with her 4-month-old baby. Among their everyday routines and quiet moments, she also shared one unexpected part of their morning, reciting the Hanuman Chalisa.

भारतवर्ष का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर्स है और जंतर मंतर का क्षेत्रफल लगभग 4 किलोमीटर का है। तो भारत की कहानी जंतर मंतर की कहानी नहीं है। जंतर मंतर में जो हो रहा है, टीवी में जो दिख रहा है और कुछ सोशल मीडिया के हैंडल में जंतर मंतर को दिखाया जा रहा है, वो भारत की कहानी नहीं है। भारत शांत है, भारत सुशासन के साथ आगे बढ़ रहा है, मगर दिल्ली के एक कोने में कुछ अराजक तत्व जिस प्रकार से अराजकता कर रहे हैं, वह कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। मगर आज मैं आपको कह सकता हूं कि आज द एनार्किस्ट्स हैव फेल्ड। जो अराजक तत्वों का फ्लॉप शो हम देख रहे हैं, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है।

0: gathered, but early morning we see already the protesters have started turning out. Being Sunday, the number could rise and that will be very challenging for the forces. At Rajiv Chowk with Lokendra, I'm Ashutosh Mishra for India Today. It's the second day of the CJP protest in the national capital demanding the resignation of CEC Ganesh Kumar. The entire national capital has been fortified. And as we see the Litians Delhi, the India Gate area, we see the morning police briefing. That's a massive deployment of the forces, the police, the RAF, the paramilitary. And all these areas have been heavily fortified. These buses have been lined up, which is bringing the additional forces from different reserve lines. And at the very same time, if the number of protesters come, these buses will also be used for their detention and taking them to the detention centers. But very importantly, what we see, how the section BNS has been imposed across the national capital. These warning signs have been placed at India Gate, and we see the police has already deployment taking place this morning. Remember, Saturday we have seen massive confrontation, and the CJP that gave the call to continue the protest even on Sunday. So this is going to be the second day, and yet no one knows how long the standoff will continue. As we see these deployments, the India Gate heavily fortified, and so are the other areas of the national capital. At India Gate with Lokendra, I'm Ashutosh Mishra for India Today.
1: So the battle over alleged electoral roll irregularities is set to intensify in the national capital today, with the Cockroach Janata Party vowing to resume its protest at Jantar Mantar at 10 a.m. Meanwhile, Delhi continues to function with metro services, internet connectivity, railway stations, shops and restaurants and liquor outlets remaining open. However, traffic diversions remain in place on key routes across central Delhi as security arrangements continue. CJP has declared it will not back down, demanding Chief Election Commissioner Ganesh Kumar's resignation and also accusing the government of using detentions to silence dissent. The defiance comes a day after a major opposition mobilization ended in a series of detentions, including those of Mamata Banerjee, Arvind Kejriwal and Pinarayi Vijayan, and also several other left leaders. The opposition too has doubled down, insisting that the fight will continue despite police action. Meanwhile, a Supreme Court special bench is scheduled to hear a contempt petition alleging excessive restrictions, blockages of metro and rail services and also detentions in Delhi.
2: Modi Shah ke is tanashayi sarkar ne अभिजीत डिपके, सौरभ अशुतोष के साथ साथ सभी स्टूडेंट लीडर्स और वॉलंटियर्स और जनता को डिटेन किया। उनको लगा होगा कि आज डिटेंशन करेंगे तो ये डर के घर वापस निकल जाएंगे, पर मोदी शाह का ये डर दिखाता है कि हम आधी लड़ाई ऑलरेडी जीत चुके हैं और ये एक नई लड़ाई की शुरुआत है। मोदी शाह को हम कहना चाहेंगे, जिस तरह से हमने पिछली बार आपका अहंकार चूर चूर किया था, इस बार भी हम अहंकार आपका चूर चूर करेंगे। आप कितने भी कोशिश करो, कितना भी प्रेशर डालो, कितने भी लोगों को डिटेन करो, फिर भी हम जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं लेंगे तब तक घर वापस नहीं जाएंगे। जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देगा, जब तक ज्ञानेश, जो कि देश का सबसे बड़ा गद्दार है और सबसे बड़ा एंटी नेशनल है, वो इस्तीफा नहीं देगा, तब तक हम जंतर मंतर से हिलेंगे नहीं।
3: ये लड़ाई सरकार के अस्तित्व की लड़ाई है, बिकॉज अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा देते हैं तो ये सरकार जिस तरीके से वोट चोरी करके चुन के आई हुई है, वो वापस से दोबारा जीत नहीं पाएंगी। इसलिए सरकार ज्ञानू को बचाना चाह रही है। आज आपने देखा होगा, सरकार ने दिल्ली में इमरजेंसी लागू की, इससे देश की हर जगह पे बदनामी हो रही है, विदेश में बदनामी हो रही है कि एक ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा देने के लिए, जिसने वोट चोरी की है, जो सबके सामने आ चुकी है, उसको बचाने के लिए मोदी शाह की जोड़ी पूरी तरीके से लग चुकी है और उसने आज पूरे दिल्ली को इमरजेंसी में उन्होंने डाल दिया था। फिर भी ये लंबी लड़ाई है, आज नहीं खत्म होगी, लेकिन जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते तब तक हम जनता में आते रहेंगे और ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेते रहेंगे।
4: पोस्टर था सेव इंडिया सेव डेमोक्रेसी, कोई पार्टी का नाम भी नहीं था, तो पुलिस आके बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकता है, इधर में बैठने नहीं सकता, नो बॉडी इज अलाउड टू सीट ऑन द रोड। हम लोग तो रोड में नहीं बैठे, हम तो हमारा घर का सामने बस स्टैंड में बैठा कि आप लोग जाने नहीं देता, हम उसको सपोर्ट करने के लिए आया है। 2 घंटा रास्ता में घुमाया, हमारा एक डायबिटिक पेशेंट है, 1.5 घंटा का बाद वो वॉशरूम जाने चाहते थे लेकिन उसको वॉशरूम जाने का मौका भी नहीं मिला। हम लोग बाहर में बैठा बिकॉज वी आर किडनैप्ड, आई कैन नॉट से मीन्स आफ्टर दैट व्हेन वी एंटर दिस इट इज अ इलीगल डिटेंशन।
1: And some more news coming in ahead of a special hearing in Supreme Court on the Delhi shutdown. Another plea has been filed in the top court. A contempt petition has been filed in the Supreme Court claiming

0: So many payment apps, but which one is safe?
1: Then switch to Bheem. It is completely safe and reliable. Keep getting rewards as well. You can also get 40 rupees cash back on your first payment above 40 rupees. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.
3: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
4: ये है एक लेगेसी।
5: You know, designs कितने? लाख से भी ज़्यादा डूड।
6: और सारे हैं BIS Hallmark Certified। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
7: एक परिवार, अटूट भरोसा।

0: आपका थर्ड टर्म है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने 2650 दिन पूरे किए हुए हैं एज अ चीफ मिनिस्टर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों की अगर सूची निकालें तो उसमें आपका ये टर्म तीन नंबर पे आता है, यानी आप दो एक नंबर पे भी जा सकते हैं आज की स्थिति में। तो शुरुआत तो मैं इसी से करना चाहूंगा कि कोई बड़ा चैलेंज आज की स्थिति में, जब आप लग रहे हैं कि आप सेटल्ड है महाराष्ट्र में एज अ चीफ मिनिस्टर, कोई बड़ा चैलेंज आपके सामने आज की स्थिति में?
1: देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि चैलेंजेस हमेशा रहते ही है। हम एक विकसनशील अर्थव्यवस्था है और विकसनशील अर्थव्यवस्था में हमेशा कोई ना कोई चैलेंज आपके सामने होता है। लेकिन अगर आप इमीडिएट चैलेंज की बात करेंगे तो इस वर्ष एल नीनो के कारण जिस प्रकार का सूखा और अकाल महाराष्ट्र में दिखाई पड़ता है, वो मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे बड़ा चैलेंज है। करीब 75% महाराष्ट्र में जो हमारा क्रॉप है वो समाप्त हो गया है, ह्यूज क्रॉप लॉस। पीने के पानी की भी कुछ दिक्कत आगे आएगी, मवेशियों के लिए चारे की भी दिक्कत आएगी, तो अभी उसी का प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि वही सबसे बड़ा चैलेंज मैं मानता हूं आज।
0: सर, दूसरी एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, आप जब भी सत्ता में आ जाते हैं अचानक लोग सड़क पे दिखना शुरू हो जाता है अलग अलग इलाकों में। जैसे पहले टर्म में हमने देखा कि देर वर लार्ज नंबर ऑफ मराठा प्रोटेस्ट आस्किंग फॉर द मराठा कोटा, फिर उसके बाद आपने बिल लाया और मराठा आरक्षण आपने लागू किया। इस बार आपका टर्म शुरू हो गया और पूरे देश भर में एक माहौल बना है कि जिसके वजह से अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट दिखाई दे रहे हैं। ट्राइबल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एमपीएससी के स्टूडेंट्स वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुंबई में हमने देखा कि अलग अलग मांगों को लेकर सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, इससे पहले का प्रोटेस्ट हुआ। ये सारा जो माहौल आप इस वक्त देख रहे हैं वो किस तरीके से आप देख रहे हैं? इज इट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, इज इट बिकॉज ऑफ देयर इज अ डिस्ट्रेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट दैट अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए सड़क पर नजर आ?
1: देखिए, मैं इसको दो कैटेगरी में विभाजित करना चाहता हूं। कुछ प्रोटेस्ट जेन्युइन है, लोगों की समस्या है, कभी किसानों की होती है, कभी आदिवासियों की होती है, कभी स्टूडेंट्स की होती है, और कुछ प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर्ड है। ऐसा है कि अगर हम लोग कुल मिलाकर ये प्रोटेस्ट का डिजाइन देखें, जैसे मसलन सीजेपी की बात अगर हम करें, तो ये सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट एक हमारे देश में एक वीक अपोजिशन है। इस वीक अपोजिशन ने जो वैक्यूम तैयार किया है, उस वैक्यूम को भरने का प्रयास ये सीजेपी जैसे लोग कर रहे हैं।
0: ये एनालिसिस में पहली बार सुन रहा हूं।
1: बिल्कुल,
0: आप कह रहे हैं कि अपोजिशन वीक है इसके वजह से सीजेपी प्रोटेस्ट कर रहा है।
1: मैं बिल्कुल बता रहा हूं, एक डिजाइन है और ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट इस विचारों का डिजाइन है कि जिसमें ये जो बिल्कुल अराजकतावादी ताकतें जो होती है एनार्किस्ट, ये एनार्किस्ट फोर्सेस ये अलग अलग प्रकार से रीग्रुप होते हैं, अलग अलग प्रकार से, और उसका एक आविष्कार ये सीजेपी के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। देखिए, ये सारे लोग जो है ये आइडियोलॉजी की लड़ाई हार चुके हैं। अब ये जानते हैं कि इनके आइडियोलॉजी पे लोग साथ में नहीं आने वाले, अब ये इश्यूज की लड़ाई पर आए, और इश्यूज की लड़ाई ये कभी भी कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी में आप लड़ ही सकते हैं, क्योंकि कभी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में ग्लास पूरा भरा नहीं होता है। तो सरकार आधा भरा हुआ ग्लास दिखाती है और इश्यूज के ऊपर आप आधा खाली ग्लास दिखा सकते हो, इस प्रकार की लड़ाई है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ऐसा मानता हूं कि इनका डिजाइन देखिए, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर सीजेपी हो, ये सारे के सारे लोग संविधान दिखा दिखा कर ये सारे प्रोटेस्ट करते हैं। और प्रोटेस्ट क्या है, तो संविधान ने तैयार की हुई सारी संस्थाएं ये खराब है, आरबीआई भी खराब है, इलेक्शन कमीशन भी खराब है, सुप्रीम कोर्ट भी खराब है, सीएजी भी खराब है, ये सारी संस्थाएं खराब है। अब देखिए, ये डिजाइन ये है कि धीरे धीरे इन सारी संस्थाओं को डिमोनाइज करना, इनको डिमोनाइज करने के बाद ये बोलना कि देखिए संविधान ने तैयार की हुई संस्थाएं आपको न्याय नहीं दे सकती, और फिर धीरे धीरे ये लोग इस बात को प्रतिपादित करेंगे कि ये संविधान आपको न्याय नहीं दे सकता। संविधान दिखा दिखा कर ही संविधान के खिलाफ ये षड्यंत्र चल रहा है, ये लोग एक अल्ट्रा लेफ्टिस्ट व्यवस्था को लाना चाहते, एक ऐसी व्यवस्था की जो, और ये मैं नहीं कहता, आप देखिए जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने अपने संविधान सभा के आखिरी भाषण में जो एनआरकी की बात की थी, अगर आप उसको पढ़ेंगे बिल्कुल सेम उसी डिजाइन से काम चल रहा है, उसी डिजाइन से, मतलब कोई भी लॉजिकल बात नहीं कहना, और किसी ने लॉजिकल बात कही तो उसको एक प्रकार से ट्रोल कर देना, ये बिल्कुल इनका एक डिजाइन है कि जिस डिजाइन के तहत इस देश में एनआरकी लाकर एनार्किस्ट फोर्सेस यहां पर अल्ट्रा लेफ्टिस्ट व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं, और अब इसमें सीजेपी और कांग्रेस में होड़ लगी है,
0: देयर इज अ कॉम्पिटिशन। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है कि क्योंकि पिछली बार जब सीजेपी का प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ था, द गवर्नमेंट एंगेज्ड विद देम, द गवर्नमेंट ने वहां पर दो बड़े सीनियर मंत्री वहां पर भेजे, उनके साथ में बात की। अगर वो एनार्किस्ट फोर्सेस है तो उनके साथ में सरकार ने बातचीत क्यों शुरू की, नंबर एक। नंबर दो, आप कह रहे हैं कि उनकी डिमांड है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन क्या पेपर लीक की वजह से जो जिम्मेदार एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी इस्तीफे की मांग करना, आपने भी तो कई बार आंदोलन किया होगा महाराष्ट्र में, मैंने आपको कई बार मंत्रियों का इस्तीफा मांगते हुए आंदोलन करते हुए देखा हुआ है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को आंदोलन करते हुए देखा हुआ है, तो पेपर लीक को लेकर मंत्री का इस्तीफा मांगना ये लॉजिकल कैसे नहीं है, किस तरीके से आप उसको रखें?
1: देखिए पहली बात तो आप ये बात समझ लीजिए कि जो एंगेज किया ऐसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल करना ही चाहिए, अगर आप डेमोक्रेसी को मानते तो आपको सबके साथ बातचीत करनी पड़ती है। हम लोगों ने तो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट जो नक्सलवादी थे उनके साथ भी बातचीत की ना, क्योंकि डेमोक्रेसी में करनी पड़ती है आपको, डेमोक्रेसी में बातचीत से ही हल निकलता है और हल निकालने का प्रयास करना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी आइडियोलॉजी हमको मंजूर है, या वो जो करते हैं वो मंजूर है, या जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को मार दिया ये हमको ठीक था इसलिए हमने उनसे बात की, ऐसा नहीं होता है। फिर भी प्रयास ये करना पड़ता है कि आप एंगेज विद द पीपल, ट्राई टू परस्यूएट देम, ट्राई टू कन्विंस देम, और नहीं होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान ने आपको जिस प्रकार से जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप देखिए नीट का पेपर लीक हुआ, गलत हुआ, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। उसके बाद गवर्नमेंट ने नीट की परीक्षा ली, ट्रांसपेरेंट परीक्षा हुई, परीक्षा का रिजल्ट आया, और रिजल्ट आने के बाद आप जंतर मंतर पे जमा होते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जमा हुई है, आपको इस्तीफा मांगने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार का प्रदर्शन वहां पर हो रहा था, जिस प्रकार की भद्दी गालियां प्रधानमंत्री जी के निकाली जा रही थी, और जिस प्रकार के वहां पर वाकयात थे, अब तो सामने आ रहा है 2000 तो ऐसे लोग थे वहां पर जो हिस्ट्री शीटर्स है, जिनके खिलाफ बहुत जघन्य इस प्रकार के अपराध है। तो ये जो सारा, देखिए इसको अराजकता कहते हैं, दिस इज एनार्की, इस्तीफा मांगना इज नॉट एनार्की, आप उपोषण करें ये एनार्की नहीं है, लेकिन इस प्रकार के लोगों को जमा करके और जिस प्रकार का प्रदर्शन हो रहा था, जिस प्रकार का भद्दा व्यवहार हो रहा था, ये एनार्की।
0: लेकिन फिर भी जो आंदोलनकारी, उन्होंने तो आपकी तारीफ की, मतलब जितना मैंने सुना है उसमें तो हमने देखा कि वो कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस सॉफ्ट हार्टेड आदमी है, उन्होंने हम पर लाठीचार्ज नहीं किया, उन्होंने हमें आंदोलन करने दिया, जबकि दिल्ली में हमने देखा कि उसको लेकर काफी गुस्सा था कि लाठीचार्ज जिस तरीके से किया गया, जिस तरीके से पुलिस ब्रुटैलिटी रही। आप मतलब आपका नजरिया थोड़ा अलग है उसको लेकर, या आपको लगता है कि बेहतर तरीके से दिल्ली का आंदोलन हैंडल किया जा सकता था?
1: ऐसा है कि अगर मेरी आपके मालिक को गाली देने की इच्छा है तो मैं कहूंगा साहिल अच्छा आदमी है, मालिक खराब है, प्रॉब्लम मालिक का है, साहिल बहुत बढ़िया आदमी है, साहिल जैसा आदमी नहीं है, ये बहुत कॉमन है, इससे साहिल ने खुश नहीं होना चाहिए, साहिल को समझना नहीं होना ही नहीं चाहिए, साहिल को ये समझना, अगर साहिल को ये समझा नहीं कि भाई ये किस लिए बोल रहे हैं कि साहिल बहुत अच्छा आदमी है, तो फिर तो मतलब सॉरी टू से, पर इससे बड़ी मूर्खता तो कुछ हो नहीं सकती ना साहिल।
0: चलिए ठीक है आप, लेकिन मैं ये तो पूछ सकता हूं ना कि जो दिखता है वो तो हम पूछ ही सकते हैं ना, कि ये बात भी तो सही है कि आपकी पुलिस ने बड़ी समझदारी से इस पूरे आंदोलन को हैंडल किया। There was not a single case of लाठी चार्ज, there was not a single case of firing, मतलब जो टियर गैस छोड़ा जाता है. देर इज नो नॉट अ सिंगल केस ऑफ दैट. कोई ब्रुटैलिटी की खबर नहीं आई. इनफैक्ट महाराष्ट्र वॉज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद सबसे पहले केसेस वापस लेने में भी महाराष्ट्र था. कोई भी ऐसी धाराएं FIR में नहीं लगाई गई जिसके वजह से आप उनको क्रिमिनलाइज करें या स्टूडेंट्स को पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े. ये भी तो रियलिटी है. इसीलिए तो कह रहे हैं, इसीलिए तो तारीफ हो रही है.
1: देखिए
0: अब इसमें आप वो तारीफ नहीं लेना चाहते, उसके लिए मैं कुछ नहीं करता.
1: देखिए अगर वो सही मन से तारीफ करते ना तो मैं खुशी खुशी तारीफ ले भी लेता, उनको थैंक यू भी बोल देता. पर उस तारीफ के पीछे का डिजाइन मुझे मालूम है.
0: देयर इज अ ट्रैप.
1: इसलिए ऐसी तारीफ ठीक है. लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, नॉर्मली महाराष्ट्र में हमेशा हमारी ये पॉलिसी रही है कि जहां तक हो सके एंगेज करिए, और जब तक कानून व्यवस्था का एक्सट्रीम प्रयास मतलब को एक्सट्रीम हानि जब तक नहीं पहुंचती है तब तक हम बल का प्रयोग नहीं करते. लेकिन कभी कभी ये होता है, आप देखिए जैसे दिल्ली में हुआ कि अगर ये लोग संसद चले जाते, सवाल वो नहीं होता है. कुछ लोग संसद चले जाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, इससे देश की बदनामी होती है, इससे पुलिस फोर्स की बदनामी होती है, और दुनिया में यह संदेश जाता है कि ये देखिए कितनी वीक डेमोक्रेसी है, ये कितनी वीक कंट्री है कि जिसके संसद में लोग घुस जाते हैं और संसद के अंदर एक प्रकार से तोड़फोड़ हो जाती है, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होता है. देश की अल्टीमेटली एक जो हमारा डिटेरेंट होता है दुनिया में, एक मजबूत देश, ये उसके लिए इसकी हानि होती है. ये तो इसीलिए कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है कि जब कोई मानने को तैयार नहीं होता, लोग कानून हाथ में ले लेते हैं, जो संवैधानिक व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को तोड़ देते हैं, तो बल का प्रयोग तो करना पड़ता है. पर बल का प्रयोग अंतिम होना चाहिए, और महाराष्ट्र में हम लोग बहुत संयम के साथ प्रयास ये करते हैं कि बल का प्रयोग कम से कम करना पड़े.
0: लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट का भी एक काम होता है कि वो एंगेज करे, जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ में एंगेज करे, जो महाराष्ट्र में हमने कई बार देखा हुआ है. क्या आपको लगता है कि दिल्ली में भी अगर उसी तरीके का एंगेजमेंट स्टूडेंट्स के साथ में या प्रोटेस्टर्स के साथ में होता तो हो सकता है कि जिस तरीके से उस प्रोटेस्ट ने बाद में रूप लिया उस तरीके से शायद चीजें नहीं होती?
1: देखिए एंगेज करे किसके साथ, ऐसा है
0: देयर इज नो बॉडी,
1: देयर इज एक प्रकार से वो फेसलेस था, और जो उसको चला रहे थे उनके भी कंट्रोल में लोग कहां थे उनके भी कंट्रोल में लोग नहीं थे. तो कई बार यह ऐसा आंदोलन खड़ा हो जाता है कि जिसमें कोई लीडर नहीं है, जो लीडर क्लेम कर रहे हैं अपने आप को वो भी लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे. वो बन गए लीडर लेकिन लोग उनके लीडरशिप के लिए नहीं आए, कोई किसी और कॉज के लिए आए, कोई किस जैसे आपने देखा जंतर मंतर पे जिनके इंटरव्यूज लोग ले रहे थे तो कई लोग तो ऐसा था जिनसे नीट से भी लेन देन नहीं था, किसी चीज से लेन देन नहीं था, कोई अलग अलग अपने कॉज के लिए आए थे, कुछ लोग रील बनाने के लिए आए थे, कुछ लोग पॉडकास्ट करने के लिए आए थे. तो मुझे यह लगता है कि एंगेज करने के लिए भी आपको लोग चाहिए. किसके साथ? अब जब ये सारा वहां का माहौल हुआ, वहां लाठीचार्ज हुआ, और उसके बाद ये जो सारे एलिमेंट है जो अलग अलग प्रकार के ये चले गए, तब जो बचे हुए लोग हैं उनके साथ गवर्नमेंट ने एंगेज किया और एंगेज करके उसमें से हल निकाला.
0: नहीं लेकिन व्हाट इज द बिगेस्ट टेक अवे ऑफ दिस, बिकॉज मैंने चेंज ये जो नोटिस किया आप केस में कि आपने समय रैना से मुलाकात की, आपने एक मीटिंग बुलाई थी मुंबई पुलिस और जो स्टैंड अप कॉमेडियंस है जिनके खिलाफ एक वक्त पे मुंबई पुलिस ने ही FIR दर्ज किए थे फॉर यूजिंग ऑब्सीन लैंग्वेजेस जो भी उनके सेक्शन थे उसमें. You tried to engage with them. क्या आपको लगता है कि ये engagement की कमी हो रही है आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में, कि उनकी जो ये Gen Z generation है उनके साथ में उनके लैंग्वेज में engagement शायद नहीं हो पा रहा है जो आपको लगता है कि जरूरी है, उनके साथ बातचीत जरूरी है, उनका तजुर्बा अलग है, उनका सिचुएशन को देखने का नजरिया अलग है, उनके साथ में ये जरूरी है ऐसा आपको लगता है?
1: मुझे ऐसा लगता है कि engagement बहुत जरूरी है, कम हो रहा है ऐसा नहीं है. लेकिन हाँ ये जरूर है कि अल्टीमेटली मैं आपको एक ही उदाहरण बताता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने आपको याद होगा एक इंस्टा पोस्ट डाला, एक इंस्टा पोस्ट, और उसने सारे अल्गोरिदम तोड़ दिए.
0: आप इंस्टा पे हैं?
1: हाँ.
0: आप रील्स डालते हैं?
1: हाँ मैं डालता हूँ, मैं सारे प्लेटफॉर्म पर हूँ, ऑल प्लेटफॉर्म्स.
0: यू ऑल्सो डू द वीडियोज एंड ऑल?
1: या आई डू, मैं करता हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ये होता है, आपको रियलाइज होता है कि भाई एक नई जनरेशन है, इस नई जनरेशन के साथ उनकी भाषा में बात करनी पड़ेगी, उनको हमको समझना पड़ेगा और उनको एंगेज करना पड़ेगा। हम लोग कर रहे हैं, हम करेंगे, कोई सवाल नहीं है। और देखिए, जो लोग जंतर मंतर पे थे केवल वो जेंजी है ऐसा हम समझेंगे तो ये गलत बात है। देखिए, ये जो बहुत बड़ी जनरेशन है, इस जनरेशन में बहुत सारे लोग हैं, इनमें से कई लोगों के साथ हम लगातार एंगेज करते हैं, कई कार्यक्रमों में मैं जाता हूं, उनके साथ एंगेज करता हूं। और मैं ये मानता हूं, देखिए, ये पहली जनरेशन है कि जो 100% टेक्नोलॉजी के साथ पैदा हुई है। मिलेनियल्स भी पूरे टेक्नोलॉजी के साथ पैदा नहीं हुए, वो एक प्रकार से मतलब उस बीच के इसमें पैदा हुए हैं। लेकिन जेन जी एक ऐसी जनरेशन है कि जो 100% टेक्नोलॉजी के साथ, स्मार्टफोन्स के साथ ये पैदा हुई है, इसलिए इसका एक्सपोजर अलग है। किसी भी इसके पहले की जनरेशन से इनका ग्लोबल एक्सपोजर अलग है, इनको जो चीज़ें परोसी जाती है वो चीज़ें भी अलग है, मतलब उसमें कुछ अच्छी भी चीज़ें, कुछ बुरी भी चीज़ें। तो इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि इनकी विचार की जो प्रक्रिया है, क्षमता है, ये थोड़ी अलग है, तो उस हिसाब से एंगेज करना पड़ेगा। मुझे लगता है हम कर रहे करेंगे
0: नहीं, क्योंकि कारण इसका ये हुआ ना कि ये इतना छोटा प्रॉब्लम नहीं है। आप एक आंदोलन की बात कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में विधानसभा के चुनाव जीतने के बाद एक ऐसा लग रहा था कि बीजेपी इज इनविंसिबल, बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, इस तरीके से लग रहा था। और अचानक देश में माहौल बदल गया, अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट होने लग गए, सवाल खड़े होने लग गए, SIR की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़ा होना शुरू हो गया, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के काम करने के तरीके पर सवाल उठे, ये सारी चीजें देखते हुए आपको लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, क्योंकि 2029 में हम चुनाव का सामना करेंगे, पार्टी को भी अपने आप में कुछ बदल करना पड़ेगा? आप 230 विधायकों के साथ इस स्टेट में राज कर रहे हैं, अगर आपके अलायंस के पूरे विधायक देखे तो, लेकिन आज फिर भी अपोजिशन आपको सड़क पे नजर आ रहा है एक तरीके से, अलग अलग फॉर्म में, कोई रवैया चेंज करना पड़ेगा पार्टी को?
1: देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो लग रहा है कि भाई बहुत माहौल बदल रहा है वगैरह, इसमें कोई मैं नहीं मानता कि तथ्य है, क्योंकि जैसे आज ही त्रिपुरा के चुनाव का रिजल्ट आया, वहां पर लोकल बॉडी का भी रिजल्ट आया, और लोकल बॉडी में टोटल स्वीप किया है बीजेपी ने, टोटल त्रिपुरा में। और सबसे बड़ी बात यह है, ये इसलिए मैं भी बताना चाहता हूं, त्रिपुरा के लोकल बॉडी इलेक्शंस EVM पर नहीं हुए, बैलेट पर हुए, और बैलेट के चुनाव में बीजेपी ने आज ही त्रिपुरा में पूरा स्वीप किया है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको ये लोग जो दिख रहे हैं, जो लोग मुखरता के साथ बोल रहे हैं, इसको अगर आप पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन समझेंगे तो आप गलती करेंगे। देश में बड़ा मास ऐसा है जो बोलता नहीं है, जो कुछ ना कुछ कर रहा है, और जो बीजेपी के साथ है, और वही बीजेपी की ताकत है, और हम उसके साथ एंगेज कर रहे हैं और करते रहेंगे। हाँ, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कोई भी पार्टी स्टैटिक नहीं हो सकती है, आपको अपने तरीके को बदलना पड़ेगा। और इसमें तो सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री जी हमें हमेशा ये कहते हैं कि आपको पिछला चुनाव जिन तरीकों ने जीता कर दिया, वो तरीके अगले चुनाव में काम नहीं आते, आपको संवाद के माध्यम बदलने पड़ते हैं, आपको विषय बदलने पड़ते हैं, आपको नए तरीके से रीच आउट होना पड़ता है। ये हमेशा प्रधानमंत्री जी का कहना होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत डायनामिक होती है, जनरेशंस बदलती है, उनके साथ आपको एंगेज करना पड़ता है, तो आपके तरीकों को भी बदलना पड़ता है। जैसे आज अगर हम विचार करें तो पिछले, समझ लीजिए कि 2024 का चुनाव, 24 के चुनाव में सबसे बड़ा मतलब जो कम्युनिकेशन हुआ जो भी, ये YouTube था और यूट्यूबर्स थे कि जिन्होंने नरेटिव को मेक ब्रेक शेप किया,
0: जो मेनस्ट्रीम में नहीं,
1: हाँ मेनस्ट्रीम में जो। लेकिन आज अगर आप देखें तो आज 40% ट्रैफिक इंस्टाग्राम पर है। अब लोग लंबी चीजें देखना नहीं चाहते, अब यू हैव टू कम्युनिकेट इन 45 सेकेंड्स, आपको एक मिनट में कम्युनिकेट करना है, क्योंकि सारा कंजम्पशन अब अगर इंस्टाग्राम पे आ रहा है और आप एक्स पोस्ट करते रहेंगे, आप फेसबुक पे, मतलब वो भी अच्छे माध्यम है, 15% 20% उनका भी शेयर है, बट इफ यू आर नॉट प्रेजेंट ऑन इंस्टाग्राम, यू आर नॉट ऑन सोशल मीडिया, If you are not communicating on Instagram, you are not communicating with the new generation. इसलिए मुझे लगता है कि हमेशा उस समय के माध्यम क्या है ये हमको समझना पड़ता है और उसके हिसाब से अपने आपको बदलना भी पड़ता है।
0: आप ये भी कहने की कोशिश कर रहे नेताओं को कि लंबे भाषण मत दीजिएगा। अभी शॉर्ट्स का जमाना आ गया, छोटे छोटे में आपको जो बोलना है वो छोटे में बोलिए, लंबे लंबे भाषण नहीं चलेंगे।
1: कम्युनिकेशन अब सबसे महत्वपूर्ण हो गया है और जो कम्युनिकेटर जो होता है ना, कम शब्दों में राइट बात जो बता पाए वो कम्युनिकेटर होता है और किसी भी नेता के लिए कम्युनिकेटर होना बहुत जरूरी है।
0: एक और एक बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि मैंने शुरुआत उससे की थी इसी के लिए कि आपका थर्ड टर्म चल रहा है, यानी बीच का टर्म तो भूल जाते हैं हम, लेकिन ठीक है दो टर्म आपके हो चुके हैं। नॉर्मली तीसरे टर्म की तरफ कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री जाता है बीजेपी में तो रास्ता उसका थोड़ा सा ट्रैजेक्टरी रास्ता थोड़ा बदल जाता है। हमने सुना है कि कई लोग यहां पर ऐसे बैठे हुए हैं कि जो इच्छा रखते हैं, आप अच्छे मन से कहिए कुछ अलग मन से कहिए, कि उनको लगता है कि आप ऊपर जाएं, दिल्ली की तरफ आप चले जाएं, और फिर हम खबर सुनते हैं कि हरदीप पुरी उनका टिकट काट दिया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, ये सब हो रहा है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, फलानी बातचीत चल रही है, तो फिर आपका नाम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर आना शुरू हो जाता है। ये क्या है, मतलब आप एक्चुअली क्या है, मतलब आप कई बार क्लैरिफाई कर चुके हैं लेकिन बातें ऐसी नहीं होती है।
1: देखिए मैं
0: तो धुआं है, तो आग है तो धुआं है,
1: आग रहती है धुआं रहता है, पॉलिटिक्स में सब चलता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेरा रास्ता अभी बहुत साफ है। मेरा रास्ता गढ़चिरौली से शुरू होता है और गढ़हिंग्लज तक जाता है, ये रास्ता बिल्कुल पक्का है, इसलिए उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मेरा रास्ता, मैं दिल्ली ये प्रवासी के रूप में जाता हूँ, निवासी के रूप में नहीं, और मैं वैसे ही रहूँगा। मेरी पार्टी ये चाहती है कि मैं महाराष्ट्र में काम करूँ, मेरे नेता ये चाहते हैं कि मैं महाराष्ट्र में काम करूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं महाराष्ट्र में ही काम करने वाला।
0: नहीं ऐसा क्यों, लेकिन अगर दिल्ली में जाने में बुराई क्या है?
1: बिल्कुल बुराई नहीं है।
0: बुराई क्या है, मतलब अगर कोई
1: भाई
0: बुराई, प्रधानमंत्री भी तो दिल्ली गए।
1: ना, बुराई नहीं है, पर जबरदस्ती क्यों भेजना चाहते हो? समय आएगा तो वहां भी जाएंगे, ये तो बड़े अजीब जबरदस्ती है। नहीं अभी जाओ आज जाओ कल जाओ, अभी आपका टिकट बुक कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। हर चीज का अपना समय होता है, अभी मेरा समय महाराष्ट्र में चल रहा है, बहुत चीजें कर रहा हूं, बहुत चीजें करनी है, मेरी पार्टी की बहुत अपेक्षा है मेरे से है, मेरे नेताओं की बहुत अपेक्षा है, उनको पूरा करूंगा। उसके बाद जब नेता कहेंगे दिल्ली आ जाओ तो दिल्ली आऊंगा, मैं तो हमेशा कहता हूं दिल्ली बुलाएंगे दिल्ली जाऊंगा, और कह दिया नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं नागपुर चले जाओ तो नागपुर अपने घर धर्मपेट।
0: सो देयर इज नो कंपल्शन कि आपको दिल्ली जाना ही है, आपने एक ट्रैजेक्टरी बना के रखी है कि आपने आप
1: बिल्कुल कोई
0: आगे
1: कोई
0: हम उस तरफ जाएंगे,
1: कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी
0: नहीं। और ये कंपटीशन दिखाई देता है कि आप प्रधानमंत्री को मिलने जाते हैं, उसके बाद एकनाथ शिंदे भी प्रधानमंत्री को मिलते हैं, आप गृह मंत्री के पास जाके एसोसिएशन की मांग करते हैं कि भाई हमें पैसे ड्राउट के लिए पैसे दीजिए, उस दिन हमने देखा एकनाथ शिंदे उनकी तरफ से भी आए कि हमने प्रधानमंत्री से मांग की। ये कॉम्पिटिशन चल रहा है, डेप्यूटी सीएम सीएम फॉर्मर डेप्यूटी सीएम नाउ सीएम वैसा
1: नहीं, मेरा अपना मानना यह है कि आप एकनाथ शिंदे जी को महज डिप्टी सीएम के रूप में देखते हैं, वो केवल डिप्टी सीएम नहीं है, हमारी जो एक साथी पार्टी है कोएलिशन पार्टनर है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, और ये एक ऐसा कोएलिशन पार्टनर है कि जो हमारे पहले तीन कोएलिशन पार्टनर में आता है, इसलिए भले ही यहां पर वो डिप्टी सीएम के रूप में हो पर देश की राजनीति में हमारे कोएलिशन पार्टनर के रूप में वो होते, इसलिए प्रधानमंत्री जी से भी उनको मिलना पड़ता है, एनडीए की बैठकों में भी उनको जाना पड़ता है, और प्रधानमंत्री से वो मिलते हैं, और अगर वो प्रधानमंत्री जी के पास इस एक्सट्रीम ड्राउट की सिचुएशन में जाएंगे
0: तो वो शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर जाते हैं,
1: शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर वो मिलते हैं, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की भी कोई चीज है तो मुझसे बात करके ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे बिना बताए वो जाते हैं।
0: पर आप पूरे कंट्रोल में है, मतलब कोई ऐसे इंटरनल कंपटीशन की?
1: एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल पूरा मेरा है, मैं व्यक्तियों को कंट्रोल नहीं करता, इसलिए व्यक्तियों पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं करता भी नहीं हूं, पर एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा मेरा कंट्रोल।
0: बट एज अ चीफ मिनिस्टर मंत्रियों पर भी तो कंट्रोल होना चाहिए, उसमें क्या है, मतलब अगर चीफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ मंत्रियों को भी कंट्रोल करना है?
1: ना, मंत्रियों को कंट्रोल करना है ना एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल, व्यक्ति को कंट्रोल नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल था ये सभी को मालूम है क्या है।
0: चलिए हमारा समय खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते मुझे आपसे एक पूछना है, क्योंकि मैंने बहुत दिन के बाद एक्चुअली आपका ट्विटर बायो देखा और उसमें आपने लिखा है कि राम सेवक कार सेवक एंड महाराष्ट्र सेवक, अपने आप को आप डिस्क्राइब करते हैं?
1: इसका मतलब आपने तीन चार सालों से देखा नहीं है?
0: हाँ, मैंने बहुत दिन से
1: तीन चार सालों से ये
0: आज मैंने अचानक देखा कि
1: तीन चार सालों से यही है
0: ये टर्म। ये आपका ये कैसा है, मतलब उसका लिंक कैसे होगा, मतलब पहले राम सेवक, कार सेवक और फिर महाराज सेवक, या सब एक साथ कैसे देखे हम?
1: देखिए, आप कैसा भी कह लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी ऐसा पिया ऐसा पिया ऐसा पिया ऊपर से पिया, वो एक ही बात है। मैं महाराज सेवक हूं ही, मैं राम सेवक हुई और मैं कार सेवक हूं ही।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस एज यूजुअल।

0: साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
1: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
2: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
3: एक परिवार, अटूट भरोसा।

ये दो अराजकतावादी समूह जिसमें एक इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी और दूसरे गुट का नेतृत्व अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी कर रही है। मैं इन दोनों गुटों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत की जनता पूरी तरह से आपके इन उद्देश्यों को देख रही है और आज जो आपका एनार्किस्ट प्रतिस्पर्धा चल रहा है कि कौन अधिक इस देश में अस्थिरता पैदा कर सकता है, ये आपके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। कि जिन विदेशी ताकतों से बल पर आप अपनी बिकाऊ राजनीति कर रहे हैं और विदेशी ताकतों के गठजोड़ से भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके नापाक इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। लगातार राज्यों में आपकी हार हताशा दिख रही है कि आप कहीं न कहीं इस देश को शांति के साथ आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे, लेकिन मैं आज के दिन आपको चेतावनी देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और देश के राष्ट्रभक्त जनता आपको पूरी तरह से इसका करारा जवाब देगी। और आज जिस प्रकार से तनाव की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, भारत की सरकार इसको कड़ाई से निपटेगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी पूरी तरह से जनता के बीच में रहकर आपके इस मंसूबे को कहीं न कहीं रोकेगा।

0: कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति को सड़क की लड़ाई में घसीटने का प्रयास किया गया, मगर एक नालायक नेता ने राष्ट्रपति महोदया को सड़क की लड़ाई में घसीटने की कोशिश की है। द एनार्किस्ट राहुल गांधी ट्राइड टू पुल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द एनार्किज्म विच ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू कंडक्ट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया, ये कहते हुए कि हम कल कुछ वोट चोरी के विषय को लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गए थे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी मान गई कि हम जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। अब देखिए, बेसिक प्रोटोकॉल भी राहुल गांधी को समझ में नहीं आता है कि आप कोई मेमोरेंडम लेके जाते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट्स द मेमोरेंडम। ये बेसिक प्रोटोकॉल है भारत के संविधान का, भारत के लोकतंत्र का, इसीलिए तो भारत का लोकतंत्र विराट है। मगर आपने कहा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसी सांस में कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कुछ एविडेंस है तो वो भी दीजिए। क्यों एविडेंस क्यों नहीं लेके गए थे? एविडेंस होगा तभी तो लेके जाएंगे।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
2: You are watching India Today.
3: A very good afternoon to all our viewers. You're watching India Today. I'm Anjali Pandey, and our top focus continues to remain on the national capital. All the action that's taking place on day two of the CJP stir. There have been detentions that are being reported from the Connaught Place area. We'll be getting you all those updates. But before that, let's take a look at the headlines. Big order by the Supreme Court on Delhi shutdown orders restoration of metro, rail and internet services, directs review of barricading rules. Court maintains there cannot be any illegal detention. After over 20 hours of preventive detention, CJP core team released Abhijit Dipke, Saurav Das and Ashutosh Ranka, told to maintain peace for 1 year, warned release subject to good behaviour. Team CJP to brief media at 2 p.m. today. Another day, another dangal in Delhi. Hundreds of protesters detained from Connaught Place. Thousands of police and CRPF personnel deployed to maintain law and order.
4: डिमांड ये देश के लोकतंत्र बचाने की डिमांड है, आजादी बचाने की लड़ाई है। ज्ञानेश कुमार ने ये देखिए, ये लोकतंत्र है। हम वोट चोर ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखिए आता नहीं।
3: United Nations body condemns Delhi detentions and curbs, says they are concerned by the crackdown. India hits back, calls remarks as unwarranted interference in the country's internal affairs. Dramatic escalation in West Asia. Saudi Arabia's Riyadh airport struck for a third time in a week. At least 12 people killed and over 300 injured. Flight operations suspended. U.S. President Donald Trump says considering joining forces with Saudi.

0: So ask my camera person to pan camera towards the other side. You can clearly see that paramilitary forces with anti-riot gears have formed a human shield to stop the protesters who march towards the other side of the road. To the other side of the road, I'll ask my camera person to show you that whole road. The Janpath lane towards the Jantar Mantar is all barricaded by the forces to stop the protesters to march towards the Jantar Mantar. But still, protesters reach here in the Connaught Place on the second day of the Cockroach Janata Party 2.0 protest. And clearly, in the visuals, you can see that they're holding SFI flags in their hand. We'll try to talk with some of the protesters to know what. So you can see that paramilitary forces are stopping media persons from talking with the detained protesters, which clearly show that how administration is also in action. This is Connaught Place inner circle, and today we have seen that yesterday internet was shut down here in the Connaught Place, and various other measures like 45 metro stations were closed around the central Delhi and various other corners of the Delhi to stop the protesters. But still, protesters successfully reached here in the Connaught Place, and now you can see that police action has started, where police has started detaining the protesting students, the protesting protesters here in Connaught Place, with cameraman Krishan Kumar and Molbali, Delhi. तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे इस समय मीडिया कर्मियों को जो है हटाया जा रहा है. यहाँ पर मीडिया के साथ जो है धक्का मुक्की की जा रही है. आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर अफड़ा दफड़ी भागा दौड़ी का जो है माहौल बन चुका है. आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान हैं जॉन ब्रिटास को डिटेन कर रहे हैं. मेंबर पार्लियामेंट हैं कम्युनिस्ट पार्टी से. तो तस्वीरें कनॉट प्लेस की साफ बयां कर रही हैं कि कैसे यहाँ पर इस समय जो हालात हैं वो हो रखे हैं. आप देख सकते हैं भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान हैं यहाँ पर तैनात किए गए हैं. और आप देख सकते हैं मेंबर पार्लियामेंट को भी यहाँ से डिटेन कर लिया गया है.
1: भूमिका जंतर मंत्र वरती आंदोलन करतात का कोर्टाकडून त्यांना नेमका कुठल्या अटी घातल्या गेल्या आहेत त्यांच्याकडून काय हमीपत्र लिहून घेतलं आहे का हे बघणं आता महत्त्वाचं असणार आहे. मात्र हे तीनही प्रमुख पदाधिकारी
2: पीसी कहां पर
3: है. कोई बेल बॉन्ड कंडीशंस नहीं है. ऑल थ्री पर्संस हैव बीन रिलीज्ड ऑन जस्ट साइनिंग अ बॉन्ड व्हिच सेज दैट दे विल नॉट ब्रीच एनी पीस. दैट्स ऑल. 50,000 का बॉन्ड है. अंडरटेकिंग है. कोई इनको श्योरिटी जमा नहीं करना पड़ा है. पर्सनल बॉन्ड्स पे दे हैव बीन रिलीज्ड. ड्यूरेशन एज पर लॉ 1 ईयर की होती है. बट इट्स अप टू द मैजिस्ट्रेट. उससे पहले भी खत्म हो सकता
2: है. कंडीशन क्या है.
3: कोई कंडीशन नहीं है. दे विल जस्ट नॉट ब्रीच पीस. देयर आर नो अदर कंडीशंस. दे आर फ्री सिटीजंस. दे कैन डू व्हाटएवर दे लाइक.
4: केवल इतना ही कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर दिया है उससे हम आश्वस्त हैं. हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हैं कि लोगों की जो समस्याएं हैं कोर्ट ने उनका चयन किया और लोगों को विश्वास हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ही ऐसी कोर्ट है जहां लोगों को राहत मिलेगी. मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहूंगा.
5: आवर फोर फादर्स पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर अम्बेडकर, दे गेव अडल्ट फ्रेंचाइज टू ऑल सिटीजन्स दैट दे आर स्नैचिंग. देयरफॉर वी आर एजिटेटिंग. सो यस्टरडे आल्सो यूथ्स वेर एजिटेटिंग. But suddenly it is even in emergency such things did not happen. In emergency we all were ministers. No trains were stopped. No flights were stopped. Nothing. The people really used to move.
6: Very unfortunate that this type of incident are going in the country. Protesters in democracy, everyone can protest. They have their voice. No one can stop their voice. Let them tell whatever is there. If you are there, you please answer to all of them. Allow them to meet the election commission. Allow them to meet the leaders. We have to accept the criticism. When we are in public life, we have to accept the criticism. If anyone is doing wrong, we have to accept this. This showed that there is a cowardice in this type.
7: कल मोदी सरकार ने वकीलों को भी नहीं छोड़ा. ये देखिए किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर डेजिग्नेटेड वकील को मोदी जी की पुलिस सड़क पे घसीटते हुए ले जा रही है.

0: हजार साल का प्राचीन यंत्र है। पूज्य कांची शंकराचार्य जी का मार्गदर्शन और प्रेरणा से उसका जीर्णोद्धारण हुआ है। श्री राम यंत्र पावन सालग्राम शिला में प्राचीन तमिल ग्रंथ लिपि में उल्लिखित है। श्री राम यंत्र
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी इज एट द जलाकांडेश्वर टेम्पल इन चेन्नई एंड वेयर ही इज ऑफरिंग प्रेयर्स एंड ही इज डूइंग पूजा व्हाइल ही इज इन चेन्नई फॉर अ डे लॉन्ग टूर एंड आई लीव यू विद दीज विजुअल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।

0: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
1: ये है एक लेगेसी।
2: यू नो डिजाइन्स कितने हैं? लाख से भी ज्यादा डोर
3: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
4: एक परिवार अटूट भरोसा।

0: And we're getting some breaking news. Storm over protesters entering Gurudwara Bangla Sahib to avoid detention and police following them from behind. Delhi Sikh Gurudwara Management Committee President Amit Singh Vass submits written complaint to Delhi police, says Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party members spread fake news to disrupt peace. He has sought action against the Aam Aadmi Party leaders. Aam Aadmi Party had claimed that Delhi police insulted Sikh emotions by walking through a passage at the Sikh shrine with their shoes on, after which now the Gurudwara committee has reacted. In fact, they have submitted a written complaint to the Delhi police saying that Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party members are spreading fake news to disrupt peace. My colleague Anshul Singh is now joining us with more details on this. Anshul, there's a fresh face-off over the Bangla Sahib Gurudwara over what unfolded yesterday during the protest. And now in the latest, we're learning that the Gurudwara Management Committee has submitted a written complaint against Aam Aadmi Party. Give us more details.
1: Well, yes, this is a very sensitive issue. If at all security forces try to enter inside a religious place, then definitely the belief that people have, definitely that gets somewhere or the other hurt. And that is the reason why the Sikh Gurudwara Prabhandak Committee of Delhi has in fact gone ahead and now given an official complaint. In the statement that they had released yesterday, they had gone ahead and very clearly claimed that the videos that were being circulated on social media, those were actually fake. And in fact, the police officers who were seen inside the Gurudwara were using the regular route, which is generally used by each and every person. In this route, the people are actually allowed to wear their shoes, and the police that had entered from this side of the gate. I'll ask my video journalist to Emmanuel to go ahead and show you that they entered from this side of the gate and exited from the other side of the gate, which is a general route that is used by people who come over here. In fact, the Gurudwara committee members who also arrive over here, they also use this same route. In fact, just a few moments ago, the president of the Delhi Sikh Gurudwara Management Committee, in fact, gave a media bite in which he had gone ahead and very clearly stated that even when Bhagwat Mann had come over here to seek blessings, his police officers, his security staff had also entered through the same route, and they were wearing they were wearing shoes as well. So there is nothing controversial. But since Punjab elections are just around the corner, and hence it is being said that this issue is being used to somewhere or the other inflate the emotions of the people and then eventually take benefits in the Punjab elections. And that is the reason why the president of the Delhi Sikh Gurudwara Management Committee has gone ahead and now given an official complaint to the Delhi police, in which he has gone ahead and named Saurabh Bhardwaj, Arvind Kejriwal for circulating these fake videos and trying to build a fake narrative so that peace could be disrupted, and hence has demanded strong action, starting with an immediate FIR that should be registered against them. The Delhi police has received the complaint. Remains to be seen if at all they'll act on it and eventually register an FIR against these Aam Aadmi Party leaders.
0: All right, Anshul, do stay with us. Let's take a look at what both the sides are claiming on this Delhi Gurudwara showdown. So the CJP alleges that Amit Shah's cops entered Gurudwara in shoes. Delhi police claims that they were walking in the common passage that leads to the shoe removal area. The CJP has also alleged that the police entered to detain the young protesters, whereas the Delhi police claims that even devotees follow the same path to the Gurudwara and wearing shoes. And the CJP has also alleged that the police action inside a Gurudwara is shameful, and the cops have said that they were walking in the common passage that leads to the shoe removal area. The Delhi police have also said that that the video was posted in a bid to provoke communal tension. So that is what the Delhi police have claimed. So that is the war of words between the CJP, which claims that the Delhi police entered. Firstly, they entered the Gurudwara wearing shoes. Secondly, they wanted to detain the young protesters. The Delhi police on the other side is claiming that that is a common passage in which everyone wears a shoe, and that is the passage that leads to the shoe removal area. Some more news coming in. Heavy security deployment has been put in place outside Gurudwara Bangla Sahib in Delhi, where several protesters gathered. The protesters have been detained and removed from the spot, and traffic movement on the road has returned to normal. Meanwhile, tensions appear to be building at Connaught Place, where more protesters are now gathering. Protesters were seen carrying masks and cloth to cover their faces, apparently preparing for possible tear gas shelling, as rapid action force personnel were also deployed. The protesters claimed that they had coordinated among themselves for the demonstration and declared that they would not leave until resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar was secured. With security forces on the ground and protesters refusing to back down, the situation at Connaught Place remains tense.
2: इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है गुरुद्वारा बंगला साहब के बाहर है और एक बार फिर से यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर आ गए हैं और अब इन्हें डिटेन करके यहाँ से हटाया जा रहा है। आप देखें कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस यहाँ पे अचानक से आए कुछ लोगों को यहाँ से हटा कर ले जा रही है, एक एक करके उठा करके इन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये बस कुछ ही दूर है इलेक्शन कमीशन से, करीब 500 मीटर दूर इलेक्शन कमीशन से जो ये तस्वीरें हैं, आप ये देखें कि किस तरीके से इन्हें एक एक करके यहाँ से डिटेन करके सबको हटाया जा रहा है। कहाँ से आया
3: सर? झारखंड से आया सर, जोर जबरदस्ती लेकर ले जा रहे
2: हैं। सीजेपी से या आयशा से?
3: मोदी को बचा रहे, चोर को बचा रहे सर, ये कलयुग है, चोर को बचा रहे।
2: तो ये देखिए इतने सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और इन्हें अब यहाँ से डिटेन करके यहाँ से हटाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन जो है भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, रैपिड एक्शन फोर्स की जो टीमें हैं वो यहाँ पे भारी संख्या में मौजूद है और उन्हें अब यहाँ से एक एक करके जो है हटाया जा रहा है, निकाल दिया गया है और एक बार फिर से पूरे इलाके में जो है ट्रैफिक को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। जिस तरीके से यहाँ पे अचानक से कुछ लोग पहुंचे उन्हें एक एक करके यहाँ से अब हटा दिया गया है, पुलिस ने सबको रिमूव कर दिया है। यहाँ पे सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स की जो टीमें थी वो लगातार यहाँ पर तैनात थी। करीब 500 मीटर दूर यहाँ से जो है वो इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन कमीशन के पास ही अचानक से फ्लैश प्रोटेस्ट किया गया, जिसके बाद यहाँ पे इतने लोग आए थे उन सबको अब यहाँ से हटा दिया गया है। आप देखिए ये तस्वीरें मैनुअल आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे भारी संख्या में जो है महिला बल भी मौजूद हैं और महिलाओं को भी यहाँ से अब डिटेन करके हटाया जा रहा है। आप देखें ये तस्वीरें सारी यहाँ की जो पार्लियामेंट जो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के पास की तस्वीरें हैं, यहाँ से जो लोग आए थे फ्लैश प्रोटेस्ट करने आए थे इनको अब यहाँ से हटा करके डिटेन कर दिया गया है। और अब देखिए कितनी भारी संख्या में जो यहाँ पुलिस बल है, जो रैपिड एक्शन फोर्स है और सीआरपीएफ है वो यहाँ पर तैनात है और यहाँ खाली करा करके एक बार फिर से इस पूरे इलाके में जो ट्रैफिक है उसे सुचारू कर दिया गया है। तो ऐसे ही छोटे छोटे प्रोटेस्ट जो है छोटी छोटी संख्या में यहाँ प्रदर्शनकारी जो है हर कुछ देर में पहुंच रहे हैं और उसके बाद डिटेन हो रहे हैं और फिर एक बार जो कानून व्यवस्था है वो स्थापित की जा रही है। तो अब ये देखना होगा कि ये कब तक चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज दिल्ली पुलिस को ये कहा है कि रिस्ट्रिक्शंस उतनी ही लगनी चाहिए जितनी जरूरी है और एक बार उसे रिव्यू भी कर ले। तो दिल्ली पुलिस ने रिस्ट्रिक्शंस अभी भी लगाई हुई हैं लेकिन काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है वो हल्की हो गई हैं। अगर आप मेरे पीछे भी आसपास भी देखें तो यहाँ ट्रैफिक भी अब चलने लगा है, बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, लेकिन जो संख्या है सिक्योरिटी फोर्सेस की, ये संख्या अभी भी जो ये क्रूशल एरियाज हैं, जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के आसपास हो, बंगला साहिब गुरुद्वारा हो, कल हमने देखा किस तरीके से बंगला साहिब गुरुद्वारे का इस्तेमाल किया गया और प्रदर्शनकारी जो हैं एक के बाद एक उसमें घुसने लगे और अब अंदर से आकर के बाहर नारे लगाते थे और फिर अंदर को गायब हो जाते थे। तो यही सब देखते हुए आज यहाँ पर इस पूरे इलाके में बंगला साहिब गुरुद्वारे के बाहर भारी संख्या में जो तैनाती है वो की गई थी और इस वक्त जो डिटेंशन है वो करीब करीब खत्म हो गया है और लोगों को यहाँ से हटा भी दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट इमैनुअल के साथ अंशुल सिंह आज तक।
0: And my colleague Anshul Singh continues to stay with us. Anshul, are the protesters now gathering outside Bangla Sahib Gurudwara also after we saw how they were being detained at Connaught Place?
2: So, yes, this is a strategy that was utilized by the protesters, specifically the members of ISA and left-leaning student organizations. They very well knew, because they have the experience of doing these protests, so they very well knew that the Delhi police will not enter inside the Gurudwara in any way or any manner. And hence, one day before, they came over here, had their dinner, stayed through the night.
4: It's an embarrassment to India. Kal, parso, जिस तरह के हालात इस देश में बनाए गए, पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी ने हमारे देश की इज्जत खराब करवाई है। ही इज टू एम्बेरसिंग एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पिछले 72 घंटों में इस देश ने तानाशाही का नंगा नाच देखा है। हजारों की संख्या में देश भर से लोगों को डिटेन किया गया, पीसफुल प्रोटेस्टर्स जो एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट पर आकर प्रोटेस्ट करना चाहते थे, उनको उठाया गया, उनके साथ मारपीट हुई। हालात इस कदर खराब कर दिए हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कि कल हम लोगों को फ्लाइट से किडनैप करके ये लोग लेकर गए।
5: मैं कह रहे
4: नरेंद्र मोदी देश के सबसे महान प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उनकी महानता का तो पता नहीं, लेकिन एक बात हम जरूर कह सकते हैं कि जिस इमरजेंसी के बारे में हम सिर्फ सुना करते थे, जिस इमरजेंसी के कहानियां हमारे मां बाप हमें बताया करते थे, पिछले 72 घंटों में नरेंद्र मोदी ने उस इमरजेंसी को भी पीछे छोड़ दिया। क्योंकि 1975 की इमरजेंसी में भी इस देश में ट्रेन्स बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन ये तानाशाह इतना डरा हुआ है, इतना कायर है कि कल सैकड़ों की संख्या में इस देश में ट्रेनों को रद्द किया गया, लाखों की संख्या में देशवासियों को परेशान किया गया। पिछले 72 घंटों में इस देश में तमाम ऐसी चीजें हुई हैं जो शायद आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुई। सौरव और रत्ना उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन एक बात जरूर साफ हो चुकी है, जो लड़ाई इलेक्शन कमीशन के खिलाफ थी, जो लड़ाई ज्ञानेश कुमार के खिलाफ थी, वो लड़ाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने खिलाफ बना दी है। नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया है कि कुछ भी करके वो ज्ञानेश कुमार को बचाएंगे। नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया है कि राजा की जान तोते में है, और यही चीज हम पहले दिन से कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी है इस देश के लोकतंत्र को बचाने की और आगे बढ़ाने की, वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की शह पर काम कर रहा है, पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज है, और सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए ज्ञानेश कुमार एस चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स काम कर रहे हैं। कल आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से फ्लाइट में घुसकर मुझे, सौरभ को और दीपके को किडनैप किया गया। कल ही अभिजीत की दादी की डेथ हो गई। इस बारे में अभिजीत को इन्फॉर्म जब किया गया तो उस समय भी पुलिस ने इतना इनह्यूमन चेहरा दिखाया जिससे आज पूरे देश को शर्म आ रही है कि इस देश की राजधानी की पुलिस इस तरह की। दीपके को जब उसकी दादी के इंतकाल के बारे में इन्फॉर्म किया गया तब भी वहां पर दिल्ली पुलिस कैमरा और माइक लेकर खड़ी थी। उन्होंने इस इवेंट को भी एक स्पेक्टिकल बनाने की कोशिश की। दीपके बार बार बोलता रहा कि मेरे पेरेंट्स बहुत जल्दी एंग्जियस हो जाते हैं, हार्ट के मरीज हैं, आप मेरे कजन से मुझे बात करने दीजिए जो वहां पर गांव में इस समय मौजूद है, मैं उससे बात करना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं क्या हुआ। लेकिन दिल्ली पुलिस का दिल नहीं पसीजा। इस तरह के हालात इस देश में पैदा हो गए हैं कि किसी के करीबी के जाने के बाद भी ये लोग पूरी तरह इनह्यूमन बिहेवियर करते हैं। आज रिलीज होने के तुरंत बाद अभिजीत अपनी दादी के लास्ट राइट्स में शामिल होने के लिए अपने पैतृक गांव की ओर निकला है, लेकिन हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि ये लड़ाई अब शुरू हुई है।

0: शर्म आनी चाहिए। अभिजीत दीप के नहीं चाहता था कि जो भी उसका पर्सनल मैटर है वो पब्लिकली उसमें बहुत इंगेज करे। ही इज नॉट समवन हु विल मेक अ स्पेक्टिकल आउट ऑफ हिज लॉस, अनलाइक द महामानव जिन्होंने अपनी मां के गुजरने के इवेंट को भी एक स्पेक्टिकल बना दिया था। अभिजीत वैसा इंसान नहीं है। As CJP, we offer our sincere condolences to Abhijit's family. We are proud that in spite of such a big loss, he stood tall and he said कि अगर 10 अक्टूबर का हमारा कॉल है तो मैं यहां से तब तक नहीं लूंगा जब तक ये लोग मुझे जंतर मंतर नहीं जाने देते। हम उम्मीद करते हैं कि अभिजीत के परिवार को जो ये पर्सनल लॉस हुआ है, दे विल रिकवर फ्रॉम इट एंड वी ऑल स्टैंड विद हिम इन दिस मोमेंट ऑफ ग्रीफ। अभी सौरव और रत्ना आप लोगों को विस्तार से बताएंगे कि पिछले 72 घंटों में किस तरह की अनप्रेसिडेंटेड हरकतें सरकार द्वारा की गई और किस तरह 1975 से भी बदतर इमरजेंसी के हालात इस देश में बनाए गए।
1: पूरे देश में एक ओपन इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है। जैसे आशुतोष ने बोला, ये हालात लास्ट 1975 में एक डिक्टेटोरियल रेजिम के अंडर देखा गया था। एंड शर्म की बात है कि इतने साल उसके बाद, इतने दशकों के बाद फिर से एक तानाशाह आज बैठा हुआ है जो पूरे देश को एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन में डाल रहा है। यहां पे लोग क्या बोल रहे हैं, इतने संख्या में अगर लोग मोबिलाइज होके खुद ब खुद आ रहे हैं दिल्ली, वो आ रहे हैं क्योंकि उनको पीसफुल तरीके से एक प्रोटेस्ट करना है, एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट में जाके प्रोटेस्ट करना है एंड अपना जो दुख दर्द पीड़ा आक्रोश है, जो अपने डिमांड्स है, उसको सामने रखना है। सरकार को तो बोलना चाहिए था कि आप हमारे पास आइए, एक डेलीगेशन लेके हमसे बात करिए और हम सुनेंगे और हम उस पर अमल करेंगे डिमांड्स को। लेकिन आज एक ऐसा सिचुएशन बना दिया गया वेयर द स्टेट इज एट वॉर विद इट्स ओन सिटीजंस, मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक जंग लड़ रही है पूरे देश के नागरिकों के साथ। बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। आपको मैं बता दूं कि क्या क्या हुआ है पिछले तीन चार दिनों में। पूरे दिल्ली में छावनी डाल दिया गया है, 30,000 से 40,000 फोर्स बुलाया गया है, नक्सल हिट एरिया बंगाल कश्मीर कहां बॉर्डर से बीएसएफ सब ट्रूप्स को एयरलिफ्ट करके दिल्ली बुलाया गया है। 40,000 से ज्यादा लोगों को रखा गया है, नाकाबंदी कर रखा है। इससे इतना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि आपको पता है पहले भी जो प्रोटेस्ट हुए थे, अगर आपको प्रोटेस्टर्स के खिलाफ किसी आंदोलन के खिलाफ एक नेगेटिव माहौल बनाना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप वो प्रोटेस्टर्स के लिए तो एक खराब माहौल बनाओगे लेकिन पूरे नागरिकों के लिए जो शायद इस प्रोटेस्ट में ना आ पा रहे हो उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। इससे नेगेटिव एक इमेज बनेगा आंदोलन के खिलाफ एंड एग्जैक्टली वही हो रहा है दिल्ली में। 57 मेट्रो स्टेशंस का बंद कर देना, दूसरे राज्यों से जो दिल्ली में ट्रेन्स आ रहे उसको बंद कर देना, राजधानी एक्सप्रेस को बंद कर देना, सारे शॉप्स को बंद कर देना। अभी हम लोग आए थे, देखते थे आज संडे है, इतने लोग निकलते होंगे अपने कामों के लिए, उन लोगों के लिए शॉप्स बंद कर देना। इससे क्या हो रहा है, सरकार को लग रहा है कि एक नेगेटिव माहौल बनेगा ये युवाओं के खिलाफ, ये मूवमेंट के खिलाफ, लेकिन वो मिस्टेकन है, उनको गलत फहमी है कि ऐसा होने वाला है क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ सरकार किस तरीके से बर्बरता कर रही है। जब मैं आशुतोष दीपके हम लोग लैंड हुए कल, लैंड होते ही

0: मतलब वो जो स्टेयर्स लगते हैं एयरक्राफ्ट में वो लगा भी नहीं था, दिल्ली पुलिस वो स्टेयर्स पे चढ़ गई और एयरक्राफ्ट के अंदर फोर्सफुली घुसी एंड हम लोगों को फोर्सफुली वहां से एबडक्ट किया गया, फ्लाइट से उठाया। बताइए, ये वो सरकार है जिसने नीरव मोदी को और विजय माल्या को फ्लाइट पे बैठाया और भेज दिया इंटरनेशनल ट्रिप पे एंड हमें फ्लाइट से उठा दिया, देश के नागरिकों को जो आए बावजूद ये जानते हुए कि हमारे जान को खतरा हो सकता है, अरेस्ट हो सकता है, डिटेन हो सकता है, तब भी हमने बोला कि ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है, ये सिर्फ सीजेपी का आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन है, हर एक नागरिक हर एक युवा का आंदोलन है, तो हम लोग भी जुड़ेंगे। हम लोग आए एंड हमें इस किस्म से एबडक्ट कर लिया गया। जब एबडक्ट किया तो कुछ पेपर्स, कुछ ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कुछ नहीं दिखाया, कोई पेपर वर्क नहीं। माफिया डॉन के तरह पुलिस आई एंड हमें उठा के ले गई, कोई पेपर वर्क नहीं दिया, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज कुछ नहीं। हमारा फोन सीज कर लिया, हमारे पॉकेट में फोन था, हमारे हाथों में फोन था, फोर्सफुली महिला पुलिसकर्मियों के को यूज करके हम लोगों से फोन छीन लिया गया। एंड जब हमने बोला कि फोन छीन रहे हो, अगर हमें कोई आपत्ति नहीं है, ले लो फोन, लेकिन सीजर मेमो दो, हैश वैल्यू दो, जो लीगल प्रोसेस है वो तो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन पूरे तरीके से दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया, बोला नहीं हो पाएगा। जब हम लोगों को अलग अलग प्राइवेट गाड़ियों में बैठा के ले गए, पता नहीं कहां कहां हम लोगों को, मुझे आरकेपुरम में रखा, आशुतोष को वल्लभगढ़ जो 20-30-40 किलोमीटर दूर है वहां पे ले गए प्राइवेट गाड़ी में, अभिजीत को भी कहीं पे रखा। एंड वहां पे जब हम लोग पहुंचे तो हमने बोला कि हमारा लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है कि हम अपने लॉयर से संपर्क कर पाए। उन्होंने मना कर दिया, बोला कि डिटेंशन जब होता है तब आपका लीगल रिप्रेजेंटेशन का राइट नहीं रहता। कितना बड़ा वायलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट्स का। सोचिए कि जो प्रदर्शन लीड कर रहे हैं उनके साथ अगर ये व्यवहार है दिल्ली पुलिस का, तो आम नागरिक, आम युवा जो आ रहा है प्रदर्शन कर रहा है, उनके साथ क्या बर्बरता कर रही होगी दिल्ली पुलिस। हम लोगों को अपने लॉयर से मिलने नहीं दिया गया, हमारे फोन सीज किए, सीजर मेमो नहीं दिया। अब हमें आशंका है कि ये जो 24 घंटे से ज्यादा उन्होंने हमारा फोन रखा, तो उन्होंने हमारे फोन के साथ क्या क्या किया होगा। आपको लग रहा है उन्होंने फोन ले लिया एंड उन्होंने एक कबर्ड में जाके रख दिया। हमें आशंका है कि हमारे फोन्स को हैक किया गया, हमारे फोन्स को शायद क्लोन किया गया, एंड जैसे दूसरे एक्टिविस्ट लोगों के साथ हुआ है पिछले कई सालों में, हमारे फोन में भी शायद कुछ कुछ उन लोगों ने हैक करके डॉक्यूमेंट्स या कुछ जो उनको लगेगा कि कल दिखाएंगे एविडेंस के तौर पे, वैसा कुछ उन्होंने प्लांट कर दिया एविडेंस। ये एक बहुत ही रैशनल और रीजनेबल हम लोगों का आशंका है, क्योंकि जो लीगल प्रोसेस फॉलो करके करना होता उनको, सीज करके सीजर मेमो देना, हैश वैल्यू देना, वो उन्होंने नहीं किया। तो कहीं ना कहीं वो जो चोरी वाला उनका दिमाग है वो दिख रहा है इसमें। तो हम आपको यहां से बता देना चाहे कि हमारे फोन्स को भी शायद हैक कर दिया गया। अब ये तो हम लोगों के साथ हुआ, लेकिन बाहर जो दृश्य निकल के आ रहे, जो हम लोग आज देख रहे हैं, देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि अमित शाह के कहने पे, नरेंद्र मोदी के कहने पे, दिल्ली पुलिस एंड सारे जो बल है सब लोग इतना इल्लीगल हिसाब से बर्बरता कर रहे देश के नागरिकों के ऊपर। सर फोड़े गए कल, हमारे जो मुंबई के कोऑर्डिनेटर है सीजेपी के प्रणय, उनके साथ कस्टोडियल वायलेंस किया गया, कस्टोडियल टॉर्चर किया गया। इसी में मैं एक चीज पूछ लू, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो सो रही है क्या? एनएचआरसी तो हमारे खिलाफ कितने सारे नोटिसेस आज तक उन्होंने दिल्ली पुलिस को भेज दिया, छोटे कुछ फ्रिवलेस कंप्लेन्स आ जाते उस पर भेज दिया, लेकिन यहां पर कस्टोडियल वायलेंस हो रहा है, कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है हमारे लोगों के साथ, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ। एनएचआरसी कहां है? हाई कोर्ट कहां है? सुप्रीम कोर्ट कहां है? उनका जो सुओ मोटू पावर्स है वो कब यूज आएंगे? अगर अभी नहीं यूज आएंगे तो, ये आपातकालीन स्थिति पे यूज नहीं आएंगे तो कब आएंगे? ऐसा कस्टोडियल टॉर्चर के एलिगेशंस निकल रहे हैं। आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जो राइट विंग के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, उन लोगों को हमने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था हमने बताया था कि कैसे ट्रेनों में भर भर के बंगाल से, यूपी से, दूसरे राज्यों से, मध्य प्रदेश से भेजा जा रहा है, एंड उनको बस एक ही इंस्ट्रक्शन है कि केओस क्रिएट करो, वायलेंस क्रिएट करो, एंड वो वायलेंस क्रिएट करेंगे एंड प्रदर्शनकारियों को के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी। उनके खिलाफ अभी तक एक मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है। ये सारे राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट लोगों को बुलाया जा रहा है, भाजपा बुला रही है दिल्ली, और आप लोग यहां पे बैठे हो, इतने भारी मात्रा में इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी है। क्या व्यवहार हुआ है इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के साथ? क्या जर्नलिज्म करना इस देश में आज एक अपराध हो गया है? दिल्ली पुलिस बोल रही है कि नेम टैग पहनिए, आईडी दिखाइए, लेकिन जब दिल्ली पुलिस से यही स्वतंत्र पत्रकार पूछ रहे कि आपके नेम टैग कहां है, वही पुलिस वाले उन लोगों के साथ बर्बरता कर रहे, उनका सर फोड़ रहे, उनको धक्का मुक्की कर रहे, उनको मारपीट कर रहे, डिटेन कर रहे। तो जर्नलिज्म के लिए भी ये एक इमरजेंसी का सिचुएशन है देश में। जर्नलिज्म को कुचला जा रहा है। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जिन्होंने युवाओं के मूवमेंट को इतने निष्पक्ष तरीके से दिखाया, उन्हीं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के खिलाफ आज सरकार जंग लड़ रही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एट वॉर विद द जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण चीज यह हुआ है कि बंगला साहिब गुरुद्वारे में हमारे सिख भाई बहन, जिन्होंने कभी भी किसी का धर्म, किसी का जाति, किसी के पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस को देख के उन्होंने कुछ नहीं किया, उन सब लोगों को उन्होंने शेल्टर दिया है, ऐसे प्रदर्शनकारियों को जब उन्होंने इस बार भी दिया शेल्टर, वहां पे आपने देखा कि दिल्ली पुलिस के लोग गुरुद्वारे के अंदर घुसे, फोर्सफुली घुसे, जूते पहन के घुसे, माथे पे कपड़ा ना डाल के घुसे, गन लेके, डंडे लेके, कितना बर्बरता के साथ वो लोग गुरुद्वारे के अंदर घुसे, एंड वहां पे फोर्सफुली प्रदर्शनकारी जो वहां पे शरण ले रहे थे उन लोगों को निकाला गया। वहां के गुरुद्वारे के जो कमिटी के मेंबर्स हैं उन लोगों को धमकाया गया कि आप इन लोगों को यहां पे शरण मत दीजिए, इनको शेल्टर मत दीजिए, खाना मत दीजिए। मैं इस सरकार को चेतावनी देना चाह रहा हूं कि हिस्ट्री इज विटनेस टू दिस, कि किसी भी सरकार ने अगर गुरुद्वारों के साथ, सिखिज्म के साथ ऐसा मजाक किया है, ऐसा बर्बरता किया है, वो सरकार का ज्यादा लंबा टाइम नहीं बचा। ये सरकार का भी एंड इज वेरी नियर, क्योंकि आपको याद होगा किस किस्म से हमारे सिख भाइयों बहनों के साथ इतना दुर्भाग्यपूर्ण एक वायलेंस क्रिएट किया गया था पास्ट में, उनको कैसे परसेक्यूट किया गया था, वैसा ही स्थिति इस बार भी देखने को मिला। आप बंगला साहिब में घुस जा रहे हो, एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, वहां पे घुस के आप लोग अपमान कर रहे हो हमारे सिख भाई बहन का। मैं कहूंगा सिख भाइयों बहनों को कि आपको लड़ना पड़ेगा। आप जैसे हमारे साथ पहले भी खड़े थे, युवाओं के साथ खड़े थे, वैसे ही इस बार भी हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हम लोग के साथ खड़े रहिए, हम लोग भी आप लोग के साथ खड़े रहेंगे। हम लोग हमेशा सारे जो हमारे साथी है उन लोगों का मुद्दा उठाते रहेंगे। पूरे देश में एक भय का माहौल बना दिया गया है, जो इस भय के माहौल से पता लग रहा है कि ये सब कुछ एक इंसान को बचाने के चक्कर में हो रहा है, एंड वो है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार से हम ये पूछना चाहते हैं, सरकार में मोदी और शाह से ये पूछना चाहते हैं कि बताइए ज्ञानेश कुमार के पास ऐसा क्या इंफॉर्मेशन है आपके बारे में जिसके वजह से आप अपने ही नागरिकों के साथ जंग लड़ रहे हो, क्यों उसको बचा रहे हो आप? आपको तो, हमें तो बताया गया कि आरएसएस भी प्रेशर कर रहा है मोदी गवर्नमेंट को कि इनको निकालिए, ये सत्ता चला जाएगा इनके वजह से। तो बताइए ज्ञानेश कुमार को आप क्यों बचा रहे हो? क्या उनको कुछ पता है 2024 के इलेक्शन के बारे में? जब मोदी जब वाराणसी का रिजल्ट निकल रहा था, काउंटिंग हो रहा था, आपको याद होगा कि वो ट्रेल कर रहे थे, पीछे चल रहे थे, फिर सडनली वो आगे बढ़ने लगे। क्या ज्ञानेश कुमार को कुछ पता है कि वो कैसे हुआ? क्या ज्ञानेश कुमार को पता है कि दूसरे भाजपा शासित राज्यों में कैसे इलेक्शन करवाए गए? क्या उनके पास ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है जिसके वजह से आप उनको बचाने के लिए 40,000 लोगों का बल लाके दिल्ली में नजर बंद कर रहे हो, लोगों का सर फोड़ रहे हो, जर्नलिस्ट के साथ बर्बरता कर रहे हो, प्रदर्शनकारियों के साथ बर्बरता कर रहे हो? बहुत बड़ा संकट है इस देश में। ये सरकार जो है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कंप्लीटली लॉस्ट इट। इट इज एट वॉर विद इट्स ओन सिटीजन्स, ऑल इन द सर्विस ऑफ वन मैन, ज्ञानेश कुमार, who is traitor number one, the original anti-national, who has committed such a big fraud with the citizens of this country by cutting down 13 crore votes. 13 crore voters have been deleted. The Gen Z, the youth has been stopped from being a voter since 2024. And this is being done because the government is scared that these young generation people who are awakened, who are asking questions, who are asking for accountability, will come after them and will seek answers from them. The government does not like it, and therefore it is resorting to violence against the citizens of this country. Hum iska khandan karte hain, hum log piche nahi hatenge. Sare deshvasiyon se appeal hai ki aapko ladna padega, aapko raston pe utarna padega, aap jahan pe ho wahan pe peaceful pradarshan karna padega. हमारे बिहार के भाई बहनों से, हमारे यूपी के भाई बहनों से, हमारे पंजाब के भाई बहनों से, दिल्ली के भाई बहनों से, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, सब जगहों से हम लोगों का अपील है कि आप प्लीज ये मुद्दे पे बात करिए और बात करिए। युवाओं से रिक्वेस्ट है कि रोडों पे निकलिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करिए, क्योंकि ये सिस्टम ऐसे नहीं चल सकता। ये सिस्टम ब्रोकन है, ये सिस्टम करप्ट है, और ये सिस्टम सिर्फ दो लोगों के कहने पे चल रहा है एंड सिर्फ उनके सर्विस पे चल रहा है, मोदी और शाह।
1: कल तमाम राजनीतिक पार्टियां, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने हमारा साथ दिया, जो आज भी लड़ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पीसफुली अपनी बात रख रहे हैं, ऐसे तमाम संगठनों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। कल जिस तरह से चार फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी, मानिक सरकार जी, पिनरई विजयन जी, सड़कों पर उतरे, इस देश के छात्रों और युवाओं के साथ इस देश को, लोक के लोकतंत्र को बचाने की उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, उसका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे तमाम संगठन, ऐसे तमाम राजनीतिक पार्टियां आने वाले समय में भी मिलकर इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगी। ये प्रदर्शन अभी भी जारी है, आज भी सीजेपी के तमाम साथी डिटेन किए गए हैं, उनके साथ मारपीट हुई है, एसएफआई के पूरी टीम को आज डिटेन किया गया है, एसएफआई के प्रेसिडेंट आदर्श के साथ आज मारपीट हुई है, एआईएसएफ के तमाम साथियों को पिछले कई दिनों से डिटेन किया गया, मारपीट हुई। तो मैं चाहूंगा कि रत्ना, ऐशे और विराज अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें कि कल किस तरह के घटनाक्रम पूरे देश में हुए हैं और आज भी किस तरह से दिल्ली पुलिस लगातार पीसफुल स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स के साथ तानाशाही रवैया अपना रही है।
2: तो मुझे अभी लग रहा है कि मैं पूरे टाइम यही बोल रही हूँ कि ये सरकार डरी हुई सरकार है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, जब हम बैंगलोर गए थे तब से ही ये शुरू हो गया था। क्योंकि मैं लीगल अफेयर्स हेड यहाँ पे करती हूँ, तो मुझे काफी डिस्ट्रेस कॉल उसी टाइम से आने लगे थे, कैसे हमारे वॉलंटियर्स को रात भर में पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस उनके घर जा जाकर उनके परिवार वालों के साथ कैसे व्यवहार कर रही थी, मारपीट कर रही थी, उन्हें डरा रही थी कि जो 10 तारीख का कॉल है उसके लिए वो ना आए। वो वहां से शुरू हुआ है और वो कंटिन्यू हुआ है कल तक। हमारे और भी वॉलंटियर्स हैं जिनके घर पर, जो कि हमारे साथ काम करते हैं, उनके घर पे जा जाके पुलिस ने उनके पेरेंट्स के साथ इतना बुरी तरह व्यवहार किया है, उनके साथ मारपीट जैसी एकदम स्थिति करी है और उनको वहां पे डराया है कि अगर आपके बच्चे इस प्रोटेस्ट में जाते हैं तो हम क्या करेंगे, आपको कोई आइडिया नहीं है। तो ये जो सारी चीजें दिल्ली पुलिस कर रही है डराने का काम, वो बहुत ही बुरी चीज है। वो दिखा रहा है कि कैसे वो एक पपेट की तरह काम कर रही है। कल मेरे घर पे, आई थिंक परसों जब रात में मैं वापस आई हूँ अपने और साथियों के साथ बैंगलोर से, तब से ही आईबी के लोग मुझे ट्रैक कर रहे थे, एयरपोर्ट पे ट्रैक कर रहे थे। बहुत सालों को हमने कन्फ्रंट करा, उन्होंने हमारी गाड़ियां चेज करी, ऐसे चेज करी जैसे कि हम कोई क्रिमिनल्स हैं और हम कोई क्राइम करके आए हैं और उन्हें हमारा पता चलना चाहिए, उन्हें हमें पकड़ना चाहिए। उनसे जब हमने जाके पूछा आपका नाम क्या है, हमारी फोटो क्यों ले रहे हैं, तो उनके हाथ कांप रहे थे, वो बता नहीं पा रहे थे कि वो कहां से आए हैं, ये क्यों कर रहे हैं। अगले दिन सुबह मैं अपने घर पे हूँ, ऑफकोर्स मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं अपने घर ही जाऊंगी सीधे। मेरे घर पे ट्रैक करके पता नहीं कहां से 4 पुलिसकर्मी वहां पहुंचे हुए थे दिल्ली पुलिस के, वो मेरे फ्लैट पे आके घंटी बजाए जा रहे हैं, मेरे जो फ्लैटमेट्स हैं उनको डिस्टर्ब करा। थैंकफुली माय फ्लैटमेट्स आर लॉयर्स, जो जिनको पता है कि दिल्ली पुलिस ऐसे जो भी काम कर रही है वो इलीगल है, वो उसके बाद भी नहीं गए, वो मुझे फोन करते रहे, वो देखते रहे कि मैं आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ। उसके बाद मैंने अपने लॉयर फ्रेंड्स को घर पे बुलाया, मैं नीचे उतरी जाने के लिए, मैं गाड़ी में बस बैठी थी कि उन्होंने अपनी गाड़ी आगे लगाई, पीछे 2 गाड़ी और लगाई एंड हमें एक तरह से रोड पे ही डिटेन कर लिया। एंड वो वहां पे मैं 9 घंटे तक बैठी रही, उस बीच में 4 गाड़ियां हमें घेर कर रखी हुई थी, उस पूरे जंगपुरा जो जहां पे मैं रहती हूँ वहां के एरिया में जितने भी लोग थे उनको परेशानी हुई। मैं बार बार पूछती रही कि रीजन क्या आप मुझे डिटेन कर रहे हो, तो उनका बस एक ही जवाब था कि हमें ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं। तो आज के टाइम पे आपको कोई भी कहीं से भी डिटेन करेगा और फिर बोलेगा कि हमें ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। वहां पे जब तक मैं थी कम से कम 30-35 पुलिस ऑफिशियल्स थे, जो आप देखेंगे वहां पे सीआरपीएफ से लेकर जो भी हायर रैंक के ऑफिशियल्स थे वो बार बार आए और उन्होंने मुझे बोला कि आप या तो हमारे साथ चलिए डिटेंशन सेंटर पे या अपने अपने घर पे जाइए, हम आपको वहीं पे डिटेन करेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर ये ऑर्डर्स उनको दे कौन रहा था। मैं एक सिटीजन हूँ इस कंट्री की, मेरे पास अधिकार है कि मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ। अगर आपके पास कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है तो आप कैसे आकर मेरे घर के नीचे मुझे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखकर मेरे से कह रहे हैं कि आप हमारे साथ डिटेंशन सेंटर पे चलिए। तो जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने कल काम करा है और पूरे टाइम ये बोला है कि हमें ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, मैं बोलना चाहती हूँ आज कि ये जो सारे ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं और जो ये ऊपर से ऑर्डर्स दे रहे हैं, वही आके हमें बताए कि ऐसे ऑर्डर्स उन्हें देने क्यों पड़ रहे हैं। क्या वो इतने डर गए हैं कि इस देश के सिटीजन साथ में आकर प्रोटेस्ट ना कर सके, जो उनका संवैधानिक अधिकार है, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू असेंबल, राइट टू मूव फ्रीली, आप उन सब पे आकर बाधा डाल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। उसी दौरान वहां पे वीडियोस आ रही थी कि ऐसे राइट विंग के जो गूंज हैं वो सीपी वाले एरिया में पूरा लड़कियों के साथ जिस तरह से व्यवहार कर रहे थे, बच्चों के साथ जिस तरह से मारपीट कर रहे थे, मैं उन पुलिस कर्मियों को वो दिखा रही थी, मैंने कहा आप इनको क्यों नहीं रोक रहे हैं, तो मुझे तब बोला जा रहा है कि हमें ऑर्डर्स आपको रोकने के लिए आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि निहत्ते लोगों पे ये अटैक करने आते हैं और जो इनका एक्चुअल काम है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम है, वो कहीं से भी नहीं होता। और इसीलिए आज इस देश में रेप कल्चर है, आज इस देश में क्रिमिनल्स जो है खुलेआम घूमते हैं, खुलेआम किसी को भी कुछ भी बोलते हैं, खुलेआम क्राइम करते हैं और उन्हें कोई खौफ नहीं होता, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर का कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ये काम करने के लिए कहीं ना कहीं उनको पुलिस से ही ये सारी चीजें आराम से कराई जाती है। ये सब मेरे साथ हुआ, मैं डिटेंशन में रही 9 घंटे, 6 बजे के बाद उनको मेरे से काफी ज्यादा प्लीड करने लगे कि आप अपने घर पे जाइए, हम नीचे कुछ लोगों को रखेंगे। मैं उसके बाद अपने घर आई क्योंकि मेरा फोन की बैटरी भी डेड थी, क्योंकि मैं लीगल हेल्प प्रोवाइड करती हूँ, मुझे लोगों से कनेक्ट होना इम्पोर्टेंट था। मैं घर आई हूँ, वो रात के 9 या 10 बजे वहां से निकले हैं। इसी बीच में हमने कोर्ट भी मूव करा है, आज कोर्ट का भी ऑर्डर आया है, उन्होंने बोला है कि ऐसे बैरिकेडिंग नहीं हो सकती, प्रोटेस्ट होने चाहिए, जो भी चीजें कोर्ट ने आज बोली अच्छी चीज है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होंगी या नहीं वो हमें देखना होगा। क्योंकि कल जब मैंने अपनी एप्लीकेशन मूव करी फॉर इलीगल डिटेंशन, वहां पर मैंने देखा जो सीएमएम का कोर्ट है उसने 4 टाइम ब्रेक लिया है, 6 बजे ऑर्डर पास करा है, उस पर भी डिसमिस कर दिया है। मैंने जब 112 को कॉल किया, मैं एक ऐसी सिटीजन हूँ जिसको लॉ के बारे में पता है, तो मैं वो सारी चीजें कर रही थी जो लॉफुल तरीके से होती है। मैंने जब 112 पे भी कॉल किया तो आईबी का कोई ऑफिसर वहां पे आया। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरी तरह ट्राई करा गया कि सबको डिटेन करके रखा जाए, जो लॉयर्स है वो मेरे साथ डिटेन होके रहे, एंड जो हमारे वॉलेंटियर्स हैं जो यहाँ पे आए थे प्रोटेस्ट करने, उनको उनके साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ है उन्हें डिटेन करके रखा है। आज जो जिनको डिटेन कर रहे हैं उनके साथ मारपीट हो रही है, उनके फोन छीने जा रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस कहीं से भी सुधरने का नहीं सोच रही है, वो वही चीज कंटिन्यू कर रही है। सुप्रीम कोर्ट चाहे जितने ऑर्डर्स पास कर दे, जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे यहाँ पे कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और जो प्रोटेस्ट जिस चीज के लिए हो रहा है, ये सारी चीजें जो कल हुई है, आज हुई है और 2 दिन पहले हुई है, इससे हमें पता चल रहा है कि जो हम प्रोटेस्ट जिस चीज के लिए कर रहे हैं वो बहुत ही सही चीज है, वो बहुत ही लेजिट चीज है, और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है। तभी ये सरकार डरी हुई है, तभी ये सरकार अपनी सिटीजन्स को रोक रही है कि वो एक साथ आकर यूनाइट होकर प्रोटेस्ट करें।
3: हाँ हाँ वो रखा सामने
4: वैसे यू कम इन द सेंटर
5: सबसे पहले सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस तरीके से कल पूरे दिल्ली को एक कंटेनमेंट जोन बनाकर रख दिया था इस देश की सरकार ने, उससे पहले जिस तरीके से दिल्ली तक पहुंचने वाले स्टूडेंट एक्टिविस्ट को, कॉमन स्टूडेंट्स को रोका गया, जिस तरीके से उनको हाउस अरेस्ट किया गया, हमारे साथी पुणे से दिल्ली को ट्रैवल कर रहे थे, वहां पे लड़कियां थी जिनको भरे ट्रेन में डिटेन किया गया, उनको 88 जंक्शन से उतारा गया, उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्हें एक बीजेपी लीडर के रिजॉर्ट पर जाके रख दिया, डिटेंशन में रख दिया। इस तरीके से जो घटनाएं घटी है इस देश में पिछले कुछ दिनों में, ये एक बात का अंदेशा है कि सरकार डरी हुई है। साथियों यहां पे बोला जाता है, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि 175 स्टूडेंट एक्टिविस्ट और जो एक्टिविस्ट है उनका लिस्ट दिल्ली पुलिस के पास है। कल उन्होंने तय किया था कि ये 175 जो लीडरशिप प्रोवाइड करता है मूवमेंट को, उन सभी लोगों को डिटेन किया जाए। उसी तहत कल हर जगह से जो है, हर जगह से यहाँ पे तमाम छात्र संगठन बैठे हैं, सीजेपी के साथ में हम सभी लोग, चाहे वो एएसएफ है, एसएफआई है, आईसा है, हम सभी लोग यहाँ पे शामिल है। जिस तरीके से कल बर्बरता पूर्वक सभी को डिटेन किया जाता है, जिस तरीके से अभिजीत, आशुतोष और सौरभ इन तीनों को जिस तरीके से डिटेन किया जाता है, इवन एयरक्राफ्ट में डिटेन किया जाता है, ये मुझे लगता है कि बहुत शर्मनाक बात है। जिस तरीके से आज भी साथियों, आज भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आज भी महिला पत्रकारों के साथ में पुलिस जो है यहाँ पे घिनौनी हरकत करती है। आपको मैं दिखाऊं, मेरे पास वीडियो है अभी, यहाँ पे प्रोटेस्ट चालू था कनॉट प्लेस एरिया में, जहाँ पे सीजेपी के साथी, एएसएफ और एसएफआई के साथी मौजूद थे, और यहाँ पे फीमेल जर्नलिस्ट के साथ में बदतमीजी की जाती है, उन्हें रोना पड़ता है। उनके साथ हमारे साथी मौजूद थे इसलिए ठीक था, पुलिस बदतमीजी करती है और उनको जो है एक प्रोटेक्टिव श्री दी जाती है, यहाँ पे इंक्वायरी कमिटीज बिठाई जाती है, लेकिन आखिर में जो है कुछ भी साबित नहीं होता है। ये इस देश की हालत हो चुकी है। ज्ञानेश कुमार जिन्होंने इस देश का मैंडेट छीना है मोदी के कहने पे, अमित शाह के कहने पे, उन्हें अपनी खुशी छोड़नी होगी। और जितने भी यहाँ पे छात्र संगठन मौजूद है, हम सब लोग सीजेपी के साथ यहाँ पे खड़े रहेंगे, जितना भी देश में जो ब्रॉडर मूवमेंट आज खड़ा होने वाला है, खड़ा हो चुका है, कल बोला जाता था कि शायद कल का कॉल जो है वो फेल होने वाला है, और कल हम देखते हैं कि दिल्ली में 20 से ज्यादा जगहों पे जहां जहां चांस मिले वहां वहां पे, जिस तरीके से अभिष को डिटेन किया गया, जिस तरीके से अजिंक्य ने कहा गया कि जिस जगह पे रोका जाएगा उसी जगह को जंतर मंतर बना डालो, उसी तहत जो है हमारे सभी छात्र संगठन, हमारे सभी साथी, जितने भी ऑर्डिनरी सिटीजन है जो चाहते कि इस देश में जमहूरियत बची रहे, वो अपना वहां पे जो है कर्तव्य बजाए। हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में ये मूवमेंट जो है वो और तेज होगा। हमारे जितने भी छात्र संगठन यहाँ पे मौजूद है वो सभी साथी इस मुद्दे को लेके आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, चाहे हमारा डिटेंशन हो जाए, चाहे हमें अरेस्ट किया जाए, चाहे हमें किडनैप किया जाए जैसे कल आशुतोष सौरभ और अभिजीत को किया था, कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद।
3: सौरभ सवाल आपसे,
4: I'll just go through briefly of what all has happened yesterday, and मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूंगी जो वीडियो ध्रुव राठी ने आज अपलोड किया है, जिससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से पुलिस भी नहीं, पीपल इन विदाउट इन यूनिफॉर्म बार्ज्ड इनटू हिज होम, इनटू हिज बेडरूम विदाउट गिविंग एनी वारंट, कोई नोटिस नहीं है, उस इंसान को बेडरूम से उठा के किडनैप अबडक्ट किया जाता है। इसको कोई रूल ऑफ लॉ नहीं बोला जा सकता है। सबसे पहले तो आप देखिए, एक इंसान आज वीडियो जारी कर रहा है कि उनके साथ कल किस तरीके से बदतमीजी की गई, किस तरीके से उनको किडनैप किया गया, किस तरीके से उनका फोन, उनके मम्मी पापा के फोन को भी वहां से हटा के रखा गया कि वो किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेशन ना दे पाए। तो इससे एक क्लियर बात हमारे सामने आता है कि इस देश के अंदर, इस कैपिटल के अंदर क्या चल रहा है। और अगर दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर यह हालत है कि पुलिस के मौजूदगी में ये सारे हरकतें हो रहा है, तो दिल्ली पुलिस को ये मॉरलिटी ना रखे कि लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने का जो काम है वो कर रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने का काम दिल्ली पुलिस नहीं कर रहा है। उसके बाद दूसरा इंसिडेंट जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, क्योंकि हम मीडिया के सामने है, एक लड़की, माइनर लड़की और एक लड़का जो राइट विंग गूंस के हाथ में कल असॉल्ट हुए, उनके कपड़े फाड़े गए कैमरा के सामने, दिस इज समथिंग दैट वी कांट टॉलरेट। कल सीपी के इलाके में, कल आईटीओ के इलाके में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को छोड़ा गया था बकायदा, जिन्होंने वीडियो रिलीज की थी पिछले 48 आवर्स में कि अगर सीजेपी के प्रोटेस्टर्स दिखे, अगर कोई भी स्टूडेंट एक्टिविस्ट दिखे तो वो उनको ठीक करेंगे। और इससे मैं लिंक करना चाहूंगी, बीजेपी के जो अध्यक्ष है नितिन नवीन ने बोला था कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ता पहले, कि अगर उनको पता है कि कैसे अपने लठबाज लोगों को लेके वो किस तरीके से कॉकरोचों का हालत करेंगे, तो दिस इज लिंक टू व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। वी कांट बाइफरकेट कि उन्होंने अलग कुछ बोला और यहाँ पे अलग कुछ हो रहा है। तीसरी चीज, मुझे लगता है शायद ही पिछले कुछ सालों में हमने यह हाल देखा है दिल्ली पुलिस का या इस सरकार का, कि तीन लोगों को वो लोग एयरक्राफ्ट के अंदर घुस के इस तरीके से डिटेन कर रहे होंगे। आई डोंट रिमेम्बर, मैं दिल्ली में हूँ, इतने साल से संगठन कर रही हूँ, छात्र संगठन कर रही हूँ, हम लोग भी स्टूडेंट यूनियन में रहे हैं, लेकिन इस तरीके का जो रवायत दिल्ली पुलिस ने कल दिखाया है सौरभ, अभिजीत और आशुतोष को डिटेन करते वक्त, मुझे नहीं लगता है हाल फिलहाल में मीडिया के साथी यहाँ है वो बता पाएंगे। चौथी चीज, जो मीडिया के साथी यहाँ मौजूद है उनको भी
3: So that was the press conference by the CJP on the protests yesterday and also on the detention. They also spoke about how they were detained from the flight itself. And in fact, while talking about the detention, they did not call it detention. In fact, they called it abduction. They called it illegal. They also talked about how they were treated after that detention. They're questioning the entire process, whether it was even legal to do so. And they also talked about the alleged inhumane treatment by the cops against the protesters. With that, we're now slipping into a very short break. We'll get you more updates on this on the other side. Stay with us.
6: You are watching India Today.
7: वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज
8: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने

0: भारत माता के धन्यवाद।
1: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे।
2: सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
3: ये है एक लेगेसी।
4: यू नो डिजाइंस कितने हैं? लाख से भी ज्यादा डोर,
5: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
6: एक परिवार, अटूट भरोसा।

0: भारतवर्ष का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर्स है और जंतर मंतर का क्षेत्रफल लगभग 4 किलोमीटर का है। तो भारत की कहानी जंतर मंतर की कहानी नहीं है। जंतर मंतर में जो हो रहा है, टीवी में जो दिख रहा है और कुछ सोशल मीडिया के हैंडल में जंतर मंतर को दिखाया जा रहा है, वो भारत की कहानी नहीं है। भारत शांत है, भारत सुशासन के साथ आगे बढ़ रहा है, मगर दिल्ली के एक कोने में कुछ अराजक तत्व जिस प्रकार से अराजकता कर रहे हैं, वह कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। मगर आज मैं आपको कह सकता हूं कि आज द एनार्किस्ट्स हैव फेल्ड। जो अराजक तत्वों का फ्लॉप शो हम देख रहे हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
2: You are watching India Today.
3: Very good afternoon, viewers. You're watching India Today with me, Sriya Kundu, and we will be tracking one of the biggest stories of the day. It is day two of what we see in Delhi unfolding. Protests, detentions, releases, SC orders, all of it being tracked by India Today. And we will first take a glance at the headlines to begin with. It's a big order by the Supreme Court on Delhi shutdown, orders restoration of metro rail and internet services, directs review of barricading rules. Court maintains there cannot be any illegal detention. After 20 plus hours of preventative detention, CJP core team released Abhijit Deepke, Saurav Das and Ashutosh Ranka, told to maintain peace for 1 year, warned release subject to good behavior. Team CJP to brief media, and that's in fact taken place just a little while back, with the CJP making some very serious allegations at both the detentions, how they were detained, as well as the protest situation that unfolded over October 10th and 11th. Another day, another dangal in Delhi. Hundreds of protesters detained from Connaught Place. Thousands of police and CRPF personnel deployed to maintain law and order.
4: डिमांड ये देश के लोकतंत्र बचाने की डिमांड है, आजादी बचाने की लड़ाई है। ज्ञानेश कुमार ने ये देखिए, ये लोकतंत्र है, हम वोट चोर ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ये देखिए आता है।
3: Meanwhile, United Nations body condemns Delhi detentions and curbs and says they are concerned by the crackdown. India hits back, calls remarks as unwarranted interference in the country's internal affairs. Tamil Nadu says Vanakkam to Modi, Prime Minister flags off a new stretch of the Chennai Metro, takes a ride with Chief Minister Vijay. Prime Minister says he will work with Chief Minister Vijay for the welfare of the state.
5: Sarkare badalti rahi, lekin Tamil Nadu ke development aur yahan ke logon ki seva ka mera sankalp hamesha atoot raha aur aaj isi sankalp ke saath hum मुख्यमंत्री जोसेफ विजय जी के साथ मिलकर तमिलनाडु के विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: Dramatic escalation in West Asia. Saudi Arabia's Riyadh airport struck for a third time in a week. At least 12 people killed and over 300 injured. Flight operations suspended. U.S. President Donald Trump says considering joining forces with the Saudis.

0: The battle over alleged electoral roll irregularities has only intensified in the national capital amid CJP call for another round of protests. Abhijit Dipke, Saurav Das, Ashutosh Ranka, after being released from preventative detention with a condition that they will maintain peace for 1 year, lashed out at the Modi government. CJP has launched a sharp attack on the government and the Delhi police over the handling of the protest. It has alleged that the government is trying to shield the chief election commissioner, Gyanesh Kumar, and that its leaders were kidnapped from inside a flight. That's the exact word used, kidnapped, abducted. CJP has further alleged that no reasons were given for the detentions, no due procedure was followed. They also said that police personnel entered a gurudwara with their shoes on, thereby insulting the sentiments of the Sikh community. This is the Bangla Sahib Gurudwara that's being referred to. YouTuber Dhruv Rathi, meanwhile, was detained as well from Gurugram ahead of the Cockroach Janata Party protest, was released in the wee hours itself today. Supreme Court, meanwhile, has directed authorities to review barricades across Delhi, restore internet services and ensure there is no total ban on public transport. The court has also asked for the free movement of public to be restored and directed the authorities to explore other suitable options and sites for lawful protests. The bench has underlined that security measures must remain proportionate and cannot completely bring normal life in the capital to a standstill. Meanwhile, Delhi continues to function with metro services, internet connectivity, railway stations, shops and restaurants and liquor outlets remaining open for the day, a lot of which, in fact, remained shut yesterday on October 10th. However, traffic diversions still remain in place on key routes across central Delhi as security arrangements continue to be in place. Let's first take a look at the responses, some from the very press conference itself, excerpts from what either of the co-founders and spokesperson had to say.
1: It's the second day of the protest in New Delhi, and now we see the left front student have hit the street, and now they are being detained from Connaught Place. The Delhi police, CRP, even the police forces from UP have also been called in. They came here to protest. Now they're being detained. While we see the hearing that was underway at Supreme Court, it was a flash protest by the left wing, left group students. They all came out in a huge number at Connaught Place. It was like a flash protest. They came at Connaught Place. Now one van full of these protesters who have been detained, being taken by the police. So they just get out of this area. They came surprisingly. However, the police forces, the deployment was adequate. And since this morning, the whole area was fortified. And now as we see, the protesters are being taken. It's a massive protest at Connaught Place. So this all area that was mobbed by these protesters that came out, now they are being detained. And because of the fortified area, they could not cross. Now we see the RAF has been placed in this area. So the moment, these are the group, the students from ISA, from SFI, from YKS, largely the left group students who came here to protest. And the moment they tried... Okay, so not only adequate number of the RAF, we also see the women jawans from the UP police have also been called in. So that's we see the kind of preparation and the panic that the arrangement was made by the administration, clearly anticipating that this is being Sunday, probably this would go at the the level that that could probably reach number that was seen on Saturday. Now we see being detained. The buses will be taking them to further. So these were the LIF group students, ISA, SFI. So just barely a few hundred meters from Delhi's Jantar Mantar, these protesters have been detained by the Delhi police and the CRP.
2: दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में जो प्रोटेस्टर हैं वो पहुंच गए हैं और देखिए इस तरह से जो पुलिस है वो हिरासत में ले रही है. तकरीबन 60 से 70 की संख्या है प्रोटेस्टर की, इनको पुलिस ने हिरासत में लिया है. सामने की तरफ देख पा रहे हैं जो आरएएफ की टीम है वो यहां पर तैनात है. कनॉट प्लेस इलाके की ये तस्वीर है. 60 से 70 एसएफआई और आईसा के लोग पहुंचे थे और इस तरह से पुलिस अगर आप देखें तो पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लेकर पुलिस जा रही है। ये तस्वीरें हैं कनॉट प्लेस इलाके की। सीजेपी ने मार्च का ऐलान किया था। हम आपको यहाँ से सीधे तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। तस्वीरें देखिए यहाँ पर, ये तस्वीरें हैं। 60 से 70 की संख्या में पुलिस यहाँ पर, जो प्रोटेस्टर है यहाँ पर मौजूद है, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और सभी को यहाँ से हिरासत में लिया जा रहा है। तो ये SFI और ISA के लोग हैं जिनको पुलिस ने अभी अभी हिरासत में लिया।
3: They have clearly saying that they won't be budging from this place until they are allowed to enter into Jantar Mantar. आपकी क्या है बड़ी डिमांड?
4: ये देश के लोकतंत्र बचाने की डिमांड है, आजादी बचाने की लड़ाई है। ज्ञानेश कुमार ने, ये देखिए, ये लोकतंत्र है। हम वोट चोर ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेके रहेंगे चाहे कुछ भी।
5: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने एक बार पुनः चेन्नई में निराधार, अनर्गल, आधारहीन आरोप हमारी सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लगाने का प्रयास किया है। वास्तविकता में सत्य क्या है, इसके लिए मैं अनुरोध करूंगा कि एक मिनट का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप लोगों के समक्ष मैं रखूंगा, जिससे आपको बिल्कुल चित्रात्मक दृष्टि से, पिक्चरस ढंग से स्पष्ट हो जाएगा कि फैक्ट्स ऑफ द मैटर और स्टैटिस्टिक्स क्या है। देखिए, उन्होंने ये कहा कि तमिल भाषा के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है नीट के आने से, जो पूर्णतः गलत है। यथार्थ यह है कि तमिल भाषा का पूरा सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है और उसको, उसके भिन्न भिन्न आयामों को जिस सीमा तक, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाकर भी स्थापित करने का प्रयास किया गया। आज देखिए, चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स किए गए, चेन्नई मेट्रो में 4,900 करोड़, नेशनल हाईवे के लिए 3,700 करोड़ और कराईकल पेरालम लाइन के लिए 7,750 करोड़ और चेन्नई VOC कामराज नगर में कार्गो क्रूज अपग्रेड करने के, 3 पोर्ट्स को अपग्रेड करने का कार्य किया गया है, यह दर्शाता है। उसके अलावा रेल रोड्स में आप देख रहे हैं 7,611 करोड़ तमिलनाडु में रेल बजट के लिए, 77 स्टेशंस को रीबिल्ट अमृत भारत स्टेशन की तरह किया जाएगा, 48,172 करोड़ रुपए, 48,172 करोड़ फॉर 45 भारतमाला प्रोजेक्ट, 63,246 करोड़ फॉर चेन्नई मेट्रो फेज 2 क्लियर्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन अक्टूबर 2024। देन 41 सागरमाला प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाइड इन तमिलनाडु, 3 पोर्ट्स विच गेट न्यू प्रोजेक्ट्स टुडे एंड 300 मीट्रिक टन ईयरली कार्गो गोल फॉर चेन्नई कामराज नगर कुडलूर मेगा पोर्ट क्लस्टर बाय 2047। प्रधानमंत्री जी ने भिन्न भिन्न अवसरों पर किस प्रकार से तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और तमिल प्रतीकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एस्टैब्लिश किया, द मैनर इन विच प्राइम मिनिस्टर हैज अपहेल्ड द प्रेस्टिज एंड एस्टीम ऑफ तमिल लैंग्वेज, तमिल कल्चर एंड तमिल लिटरेचर ऑन द इंटरनेशनल स्टेजेस। और ये प्रधानमंत्री जी का, दिस इज एन स्टेटमेंट बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन UN जनरल असेंबली इन विच ही वाज स्पेसिफिकली रेफरिंग द रिलीजियस एंड लिटरेरी एस्पेक्ट ऑफ द तमिल कल्चर एंड द लैंग्वेज।

0: salió.
1: अब सबसे बड़ी बात है कि जब तमिल संस्कृति के प्रतीक पवित्र सिंगोल को भारत की संसद में रखा गया, when the sacred Sengol has been put in the new parliament building, which was a revered symbol of eternal Tamil culture, then the Congress opposed. It was in May 2023. Then the classic Tamil Institute in Chennai was established. The Chola copper plate were taken back on 16th of May 2026 from Hague. And Subramani Bharati chair at BHU was established by Prime Minister in September 2021. Bharat mein kis prakar se ekta bane? Rahul Gandhi ji ka lakshya rehta hai ki kis prakar se vibhajakta bane? Rahul Gandhi is concentrated how to create divisivity, and our aim is to upheld the actual unity of the Indian culture. That's why Kashi Tamil Sangamam and Saurashtra Tamil Sangamam were initiated by our Prime Minister, which was a very unique, peculiar and coherent issue for the national integration. अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी रशिया गए थे. नाउ आई वुड लाइक टू पुट अप क्विकली, जस्ट लास्ट मंथ यू हैव सीन दैट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज प्रेजेंटेड थिरुकुरल टू पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट. थिरुकुरल इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड तमिल लिटरेचर विच इज हैविंग 1330 पद विच इज डिवाइडेड इंटू थ्री चैप्टर्स एंड इट इज बीन गिवन to Russian President. Government of India has started Thiruvalluvar Cultural Center all over the world, and the first cultural center has been established in Singapore. I would like to ask Congress Party, from 1967 you are out of power since Tamil Nadu. Have you ever done anything of this sort? Then Prime Minister has announced the establishment of the Rajaraja Chol and Rajendra Chol statues when their 100,000th anniversary was established. Ab main ye bhi batana chahta hu, that shows our impartiality. When our government has decided its biggest policy change, that was the defense production and indigenous capability of India's defense capability. Two defense corridors were decided, one in the northern India and other in the southern India. In northern India, Uttar Pradesh became the center. Anybody can think that UP में ठीक है, हम उस समय पावर में नहीं थे जब 2015-16 में हुआ, पर हम यूपी में पावर में आ सकते थे. But the second defense corridor was given to Tamil Nadu, in which we are neither in the government nor in the opposition. That shows Prime Minister Shri Narendra Modi ji's justified, judicious approach and its positive approach towards upholding and upbringing the manufacturing industry of तमिलनाडु. दूसरी चीज मैं याद दिलाना चाहता हूं, महाबलीपुरम में चाइना के राष्ट्रपति को लेके गए थे. राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आपको पता भी है कुछ तमिल संस्कृति के बारे में, महाबलीपुरम का क्या महत्व था? वहीं से एक पल्लव किंग थे जिनका के नाम था बोधिधर्मा, और वो चाइना में जाकर दमो के रूप में विख्यात हुए, एंड ही इज कंसीडर्ड द पैट्रियार्क ऑफ द जैन बुद्धिज्म. पूरे चाइना में वो एक पितामह के रूप में माने जाते हैं. यह संबंध था, परंतु यह संबंध कभी भी कांग्रेस ने इन चीजों को पूरी तरीके से स्थापित नहीं किया. एंड लास्टली आई वुड लाइक टू रिमाइंड हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के स्पीचेस में देख लें, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल माइट नॉट बी नोइंग दिस, यू नो विच इज द मोस्ट कोटेड Indian classical text in the budget speeches in Indian parliament, it is Thirukkural. तो यह दर्शाता है. और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह जो लड़ाई लगवाने की कोशिश राहुल गांधी करते हैं, कि पहले जो झूठ की गूंज वो कर रहे थे, पुणे में जाकर उन्होंने सोचा कि महिला पुरुष में ही लड़ाई लगवा दें स्मैश पैट्रियार्की करते हुए। अब सोचा उत्तर दक्षिण में ही कुछ लड़ाई लगवा दें, तो उनकी भाषा में लड़ाई की जो आकांक्षाएं वो पूरी नहीं होंगी। बिकॉज इफ यू रिमेंबर काशी तमिल संगमम जो लास्ट हुआ था उसमें प्रधानमंत्री जी ने 5 मिनट तक जो हिंदी में बोला था वो AI के द्वारा लाइव तमिल में ट्रांसलेट हुआ था। और अब भारत की संसद में 22 भारतीय भाषाओं का AI के द्वारा आप लाइव ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। पहले होता यह था कि आप हिंदी इंग्लिश में तो बोल सकते थे, इफ यू वांट टू स्पीक इन योर ओन लैंग्वेज यू हैव टू गिव 1 डे नोटिस ताकि उस दिन उस लैंग्वेज का ट्रांसलेटर अवेलेबल रहे। अब कोई समस्या नहीं है। विद इन फ्यू ईयर्स राहुल गांधी जी ये भाषा पे लड़ाने की आपकी आरजू दिल के अंदर ही दफन होने वाली है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी किसी भी लैंग्वेज का ओरल और टेक्स्ट इतनी क्विकली और इतना हाई क्वालिटी का करने जा रही है कि यह मुद्दा अब पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। और मैं एक और बात याद दिलाना चाहता हूं, ये पिछली बार राहुल गांधी जी पुणे में बोले थे स्मैश पैट्रियार्की, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। सिर्फ भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति एक ऐसी है जो हमारे यहां मातृशक्ति की आराधना करती है। मैं पूछना चाहता हूं हैसियत हो तो किसी और से पूछ के दिखाओ। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए जब हम चंद्रमा के अछूते दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचे तो उस पॉइंट का नाम पॉइंट शिव शक्ति रखा था। और ये जितने स्मैश पैट्रियार्की वाले उनसे मैं पूछना चाहता हूं, हमारे यहां तो कहा गया है देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो सुखारे, यानी ये देवी तुम्हारे चरण कमल को पूज कर मनुष्य मुनि और देवता सुखी होते। बताओ भाई हैसियत है कि ग्रैंड मुफ्ती की बात के आगे चुप, स्मैश पैट्रियार्की पे दहाड़ चिंगाड़ और उस पे मिमियाते भी नहीं है, मगर विभाजकता का खेल पुणे से लेके चेन्नई तक चल रहा है और दोनों ही यथार्थ के धरातल पर नीचे गिर रहा है। दूसरा मैं उदाहरण बताना चाहता हूं,

0: आगे आ रहा है। और मानवीय बात है, बहुत सी शक्तियों को नहीं अच्छा लग रहा होगा। अब उसमें आप इमरजेंसी की बात करते हैं, 1 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेटिंग हो गई तो किसी को इमरजेंसी नजर आती है? मुझे लगता है आज की पीढ़ी, इवन हमारी पीढ़ी को भी वो नहीं पता है। सिर्फ सुनी हुई बातें तो याद दिलाने की बात है, सिर्फ 2 पॉइंट याद दिलाता हूं। जानते हैं इमरजेंसी क्या होती थी? आज आप यहां बैठकर प्रधानमंत्री जी के बारे में जो मन में आता है ना आप शराब बोलते हैं, निराधार अनर्गल भी बोलते हैं। इमरजेंसी में एक रूल था, DIR, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल। अगर आप किसी सार्वजनिक स्थल पर सिर्फ इतना बोल दें कि इंदिरा गांधी की सरकार को हटाना है, आप जेल में और बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। और फिर इतना ही नहीं था, कोर्ट में यह भी पूछा गया था वकील के द्वारा कि योर ऑनर, अगर आप ये कह रहे हैं तो क्या पुलिस किसी को गोली मारती रहे तो हम देखते रहेंगे? तो उन्होंने कहा हां, देखते रह सकते हैं। मानवाधिकार सस्पेंड कर दिए गए थे, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं संविधान में, वो सस्पेंड कर दिए गए थे। सारा अपोजिशन जेल में था, संसद की 5 साल की कार्यावधि समाप्त कर दी गई थी, बढ़ाकर 6 साल कर दी गई थी। इसलिए किसी बात को, राई को पहाड़ से तुलना करने का प्रयास, पुनः मैं एक बार कह रहा हूं, ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाना है। और जो लोग लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदलकर अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं, उनके मंसूबे क्या हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए। इसलिए जब आप इमरजेंसी जैसी चीज से तुलना करते हैं तो यह अपने आप में दिखाता है कि आप उन तमाम लोगों का, 1.25 लाख लोग जिसमें जेल में थे, जिन्होंने यात्राएं सही थी, उनके कष्ट का, और उसमें से तमाम लोग आज भी जीवित हैं, उनका मजाक बना रहे हैं। और इसी के साथ मैं यह भी एक बिंदु कहना चाहूंगा, आज ये सब हो क्यों रहा है, इसका कारण समझिए। जेनेसिस ऑफ द प्रॉब्लम यह है कि भारत बहुत तेजी से लगातार पिछले करीब 1.5-2 सालों से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग ऑल द मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है।
1: इसके पीछे भी एक दिलचस्प प्रेरणा है। हमारी गिरिजा अम्मा कुछ महीने पहले ही मुझसे कुछ बच्चों के साथ नागरकोइल में मिली थी। उनकी लगन, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और देश के फ्यूचर के लिए उनका डिवोशन, उसने मेरे मन पर एक अभूतपूर्व छाप छोड़ी थी।
2: நண்பர்களே, இன்று நான் உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கின்றேன். இதன் பின்னணியில் கூட ஒரு சுவாரஸ்யமான கருத்தூக்கம், உத்வேகம் இருக்கின்றது. நம்முடைய கிரிஜா அம்மையார் சில மாதங்களுக்கு முன்பாக சில குழந்தைகளுடன் என்னை நாகர்கோயிலிலே சந்தித்தார். அவர்களுடைய ஈடுபாடு, அவர்களுடைய தன்னம்பிக்கை, மேலும் தேசத்தின் எதிர்காலத்துக்காக அவர்களிடம் இருந்த அர்ப்பணிப்பு, இவை என் மனதில் நீங்காத முத்திரையை பதித்துவிட்டன.
1: உசி முலாகாத் மே உன்னோனே முஜே இஸ் கோல்டன் ஜூபிலி செலிப்ரேஷன் கிலியே இன்வைட் கியா தா. ஏக் தோ உன்கா ஸ்னேஹ், दूसरा इस ऐतिहासिक संस्थान के प्रति मेरी भावना, मैंने तभी पक्का कर लिया था कि मैं इस कार्यक्रम में जरूर आऊंगा। मैं इस अवसर पर विश्व हिंदू विद्या केंद्र और पूरे हिंदू विद्यालय परिवार को 50 ईयर्स की शानदार यात्रा के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
2: அவர்களை நான் சந்தித்த போது இந்த பள்ளியின் பொன்விழா கொண்டாட்டத்திற்கு எனக்கு அழைப்பு விடுத்தார். ஒரு பக்கம் அவருடைய உள்ளார்ந்த அன்பு ஒரு புறம், மறுபுறத்திலே இந்த நிறுவனத்தின் ஆளுமை, இதன் பழமை இன்னொரு புறம். அப்போதே நான் முடிவு செய்தேன், இந்த விழாவிற்கு கண்டிப்பா

0: What can I say? I just said it before we even started the program. Just 4 days ago, I was watching them on TV and I was cheering for them. And it feels surreal that we've got them joining us in flesh and blood, sitting right next to us. I'd like to thank all of them. I must tell you one thing before I even introduce the session. The two girls there, the nationals are on right now, the athletics nationals. Kiran on the extreme left has already run a race. She ran a race in the evening yesterday, took a flight, is here, is going to go back and be running a race tomorrow as well. So, you know, kudos to her to have taken out time just for us and grace us with her presence. So none of them need any introduction, but I'll do it anyway. Kiran and Prachi are two members of that 4 into 400 meter relay girls team that won the gold medal, beat China in that final. And Navneet right next to me, don't go by her short demeanor. She packs a punch when she hits the ball with her hockey stick. She's one of India's leading goal scorers and the vice captain of the women's hockey team that also won the gold medal there at the Asian Games. She's also an Olympian and has been there at the Olympic Games too. Came very close to winning an Olympic medal too. But I'll start with the relay girls. Navneet, don't feel left out. I'll come to you a little later, but I'll start with the relay girls. You know, just to put it into context, Asian Games runs for a period of 14 days. And the first 10 days, quite frankly, were very disappointing for India. There were no golds coming. Plenty of silvers, plenty of bronze. We got two gold medals, one in kabaddi, one in women's cricket. But that wasn't a big surprise because we are the biggest powerhouses in Asia in those two sports. The real medal somebody craved from was from a traditional Olympic sport. That wasn't coming. And I actually felt that we'll finish the Asian Games with gold medals in single digit. That would have been one of our most disappointing performances. But these girls changed that. Day 10, almost towards the end of the Asian Games, they win India the third gold medal. After that, the floodgates opened. India finished with 21 gold medals, but it all started because of these girls, what they did on the track. Aap dono se start karta hun, Prachi aur Kiran. Ek aur cheez jo maine kal hi notice kari, waise to main jab race dekh raha tha, aap jaise daude, usi pe mera pura dhyan tha. Par Prachi aati hai Uttar Pradesh se, Kiran aati hai Haryana se, Vitya aati Tamil Nadu se, theek hai, Poovamma aati Karnataka se. चार अलग अलग स्टेट, लेकिन जब आप दौड़े, अगर नेशनल इंटीग्रेशन का मुझे ऐड बनाना होता तो आपकी रिले टीम का मैं लेता. कोई भी आप में से मुझे बताए, अलग अलग स्टेट से आते हैं लेकिन एक रिदम चाहिए होती है, एक कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है. जब एक साथ आते हो इंडिया के लिए तो क्या हो जाता है, कैसे होता है?
1: पहले आप सभी को मेरा नमस्ते. तो मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ कि जैसे हम ट्रेनिंग करते हैं साथ में, सब बच्चे एक जगह पे ही हमारा कैंप रहता है, तो उस टाइम पे जैसे हमारा सिलेक्शन हो गया कि हम फोर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ पे हमें दौड़ना है, तो हम सब एक ऐसे रहते हैं कि हमें एक यूनिटी है. हम अभी किसी स्टेट से नहीं, हम इंडिया से हैं अभी, और हमें इंडिया के लिए खेलना है. वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि हम एक युद्ध में गए हैं और युद्ध में हमें सबको मारना है और खुद जीत के जाना है. खुद का मतलब अपना फ्लैग जो है वहाँ पे अपना झंडा गाड़ के आना है, ऐसे ऐसे रहता है. तो हम जैसे ही वार्म अप कर रहे थे, हम फिर कोल रूम में पहुँचे, तो हमें ये था कि हमें आज गोल्ड लेना है क्योंकि हमारा एथलेटिक्स में अभी तक तो गोल्ड नहीं आया. तो सब लोगों को ये है कि गोल्ड एक तो चाहिए. तो हमारा सबका माइंड में यही था कि आज जाना है, गोल्ड लेना है. गोल्ड लेने से हमें क्या होगा, जैसे हमारा नेशनल एंथम होता है, तो जब किसी का गोल्ड आता है ना किसी कंट्री का, तो उसका नेशनल एंथम वहाँ पे मतलब वो बजाते हैं. तो हमारे माइंड में ये था कि नेशनल एंथम तो हम यहाँ पे बजवा के जाएंगे अपना, और अपना झंडा गाड़ के जाएंगे. तो हम सब यही मतलब यही आपस में बोल रहे थे कि हम सबसे स्ट्रोंग है, बस हमें अपने जैसे हमारे पास बैटन आएगा तो हमें हमारा टारगेट रहेगा कि हम दूसरे वाले को पास कर रहे हैं तो ज़्यादा डिस्टेंस के साथ पास करें, जिससे जो हमारा नेक्स्ट जो लड़की भाग रही है उसको ये फील हो कि उसको भी एक बूस्ट मिले कि इन्होंने मुझे अच्छे नंबर पे दिया है तो मैं भी अच्छे से फिनिश करूं. तो यही टारगेट था हमारा.
0: किरण, पिछली बार प्राची शायद आप दौड़े भी थे जब चाइना ने इंडिया को हरा दिया था, सेकंड आ गई थी इंडिया पिछले एशियन गेम्स में।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: इस बार क्या था भाई कि ये सोच के आए थे कि इस बार चाइना को नहीं छोड़ना है?
1: देखो जब 2023 में हमारा सिल्वर था वो भी बस जस्ट माइनर 20 माइक्रो सेकेंड से रह गया था, तो तभी मेरे माइंड में आ गया था कि ये गलत हो गया, सिल्वर की जगह मुझे गोल्ड चाहिए था। तो वहाँ पे मतलब हमारी टीममेट है, फर्स्ट एशियन गेम्स है, मैं खुश भी थी कि पहले एशियन गेम्स में मेडल लेके जा रही हूँ, बिना मेडल के नहीं जा रही हूँ, बट माइंड में था कि नहीं गोल्ड लेके जाना था। तो तभी मैंने ठान लिया था कि अगर मैं नेक्स्ट एशियन गेम्स में आती हूँ तो मैं गोल्ड तो लेके ही जाऊंगी, ये मैंने तब 23 में ही मेरे दिमाग में आ गया था ये बात।
0: ये झूठ नहीं कह रही, इनका जो मैं लकी हूँ, इनका फोन नंबर मेरे पास है, इनको जो इनका व्हाट्सएप स्टेटस है ना उस पर लिखा है कि आई विल नॉट विन अ मेडल इमिजिएटली बट आई विल विन अ मेडल इवेंचुअली।
1: यस सर,
0: ये इनका मोटो है लाइफ में और आई थिंक ये एक लाइफ लेसन है, कोई भी चीज अगर हमें चाहिए इमिजिएटली नहीं मिलेगी लेकिन मिलेगी जरूर, आई थिंक। एंड वो उन्होंने करके भी दिखाया। किरण आप बताएं, वो जब सलमा नासिर आ रही थी एंड में, आपके हाथ में तो था नहीं बेटन तो पास हो चुका था, डर तो लग रहा होगा कि कहीं गोल ना चूक जाए, क्या चल रहा था उस वक्त माइंड में?
2: देखो सबसे ज्यादा डर तो उसी टाइम पे लग रहा था, ऐसा नहीं है कि डर नहीं होता, वो डर एक अंदर था क्योंकि स्टार्टिंग से इतना लीड नहीं था, पर ये बोल सकते हैं कि हम अच्छा कर रहे थे, लेकिन मुझे अपनी टीम पे इतना ट्रस्ट था और वो चीज़ हमने पहले से ही अट्रैक्ट कर रखी थी क्योंकि सब लोग उस चीज़ को बोल रहे थे कि गोल्ड तुम्हें ही लेके आना है और नेशनल एंथम बजवाना है। वो मेडल से ज़्यादा वो दिमाग में चल रहा था कि अगर हमारा फर्स्ट हुआ गोल्ड हुआ तो नेशनल एंथम बजेगा। और भाग वित्या रही थी फोर्थ रनर, हाँ। लेकिन एक्चुअल में हम उधर खड़े थे पर ऐसा लग रहा था हम साथ में ही भाग रहे हैं, ऐसे पुश कर रहे थे कि चल वित्या चल कमॉन कमॉन। और तब हम फर्स्ट हुए, मतलब तब हमारा गोल्ड हुआ, तो मतलब बता नहीं सकते, वो इतना खुशी था, अभी भी मतलब मुझे घूस बम आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम चारों एक साथ भाग रहे थे। और जैसे ही हमने मतलब फर्स्ट किया वो खुशी पहले कम थी लेकिन वो बढ़ के चार गुना हो गई क्योंकि वो नेशनल एंथम बजेगा और हमारा फाइनली गोल्ड हो गया। पूरा इंडिया ऐसे प्रे कर रहा था, ऐसा लग रहा था सब ये बोल रहे हैं कि कम ऑन इंडिया।
0: एक चीज है, इंडिया ने इस पर्टिकुलर इवेंट में 7 बार गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में, इसका मतलब 400 मीटर स्पेशली वुमेन की जो रिले है उसमें हम हमेशा अच्छा करते हैं। किरण आप बताएं, उससे प्रेशर बढ़ जाता है कि आप फेवरेट हैं, यानी इंडिया अगर गोल्ड नहीं जीतेगा 4x400 वुमेन में तो आपने अंडर परफॉर्म किया है, जैसे प्राची भी बता रही थी पिछली बार सिल्वर आया, उससे एडेड प्रेशर आता है या वो आपको और जज्बा देता है बेटर परफॉर्म?
2: प्रेशर नहीं बोल सकते पर कहीं ना कहीं ये रहता है कि सब लोग उम्मीद लगा के रखे हैं तो हमें गोल्ड चाहिए, अगर वो सब सोच रहे हैं तो डेफिनेटली हम सब वो कर सकते हैं, इसीलिए वो उम्मीद लगा के बैठे हैं। और प्रेशर भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, पर गोल्ड का इतना प्रेशर नहीं था, मेन सबसे ज्यादा प्रेशर था वो था इतनी सब लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं और वो नेशनल एंथम के लिए।
0: प्रेशर की जहाँ तक बात है प्राची, बाय द वे प्राची इंडिविजुअल मेडल भी इन्होंने 400 मीटर में जीता, दो दो मेडल है उनके एशियन गेम्स में। आपकी एक सेलिब्रेशन होती है, ऊपर देखते हैं है ना, और फिर कुछ नीचे की तरफ पॉइंट करते हैं, क्या होता है वो, क्या क्या कह रही होते हैं
1: वो ये होता है कि भगवान को बोलते हैं कि तू साथ था और मैं थी, बस हमारा दोनों का एक कोऑर्डिनेशन था कि क्योंकि कैसे होता है कि हम जब हम ट्रेनिंग करते हैं अप डाउन आते रहते हैं, माइंड भी थोड़ा कभी कभी ऐसा है कि बॉडी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रही, तो ऐसे रहता है कि क्या पता होगा या ना होगा, एक डाउट सा रहता है। और फिर भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं प्रे करते हैं तो भगवान का साथ रहता है। फिर कोई कोई नीचे वाले ऐसे बोलते हैं कि इससे तो क्या ही होगा, ऐसे कोई कोई लोग होते हैं ना हमारी लाइफ में जो डीमोटिवेट भी करते हैं कि अब तो 29 हो गई है अब तो क्या ही करेगी, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो फिर तब वो याद आता है कि एक भगवान तू था और एक मैं हूँ, आज मैंने कर दिया, तूने साथ दिया और मैंने कर दिया, तो वो रहता है कि आज जो मैंने एक्सेप्ट किया था और जो आपने मुझे मेरी सुनी वो कंप्लीट हो गया है, ऐसे रहता है वो माइंड में तब उस टाइम पे।
0: अच्छा तिरंगा तो आपके साथ रहता है, मैं देख रहा हूँ हमेशा रहता है, आपके हाथों में क्या है?
1: हाँ जी, जब मैं गई थी तो नेल आर्ट करा के गई थी,
0: इंडियन फ्लैग है वो।
1: हाँ जी हाँ जी, उसका ये था कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पूरा वहाँ पे तो हमारी यही भावना है कि हमें हर जगह तिरंगा ही दिखे, तो इसलिए अपने हाथों पे डेली साथ में रहते हैं ना हाथ और नेल्स, तो हमेशा याद रहता है कि हाँ तिरंगा आना है, तिरंगा देखना है, तो ये था इसका मोड़।
0: तो ये आप घर से तैयारी करके गई थी, एक चीज और तैयारी करके गई थी, ड्रेस भी बना के गई थी, क्या है वो जरा बताएं।
1: हाँ जी, जैसे मैंने बताया 2022 में मेरा एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल था,
0: सिल्वर था हाँ।
1: तो हमारे जो CM है योगी आदित्यनाथ जी, तो उन्होंने पॉलिसी बनाई है कि जो गोल्ड मेडल जीतेगा उसको ही हम DSP की मतलब यूनिफॉर्म मतलब DSP बनाएंगे। तो तब मेरा गोल्ड आया था, तब मैं DSP नहीं बन पाई, तब भी मैंने ठान लिया था कि अगली बार आऊंगी तो DSP बनूंगी। तो इस बार मुझे कॉन्फिडेंस था बहुत ज़्यादा अपने ऊपर, और इस बार मैंने अपना पर्सनल बेस्ट टाइम भी दिया है इस साल में, तो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था कि इस बार जाऊंगी तो पक्का हम गोल्ड तो लेके आएंगे। तो पहले से ही मैं यूनिफॉर्म का घर से नाप दे के गई थी कि जैसे ही आऊंगी उसको पहनूंगी गोल्ड लेने के बाद, तो ये था उसका मोटिव।
0: तो आके पहन लिए कि नहीं पहनी है?
1: हाँ जी, अभी बन गई, अभी जैसे ही मेरे को मिलेगा लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, तब पोस्ट डालूंगी, सब देखेंगे।
0: बहुत ही जबरदस्त, इतना कॉन्फिडेंस था जाने से पहले ये अपनी वर्दी
1: हाँ बिल्कुल
0: बनवा के गई थी। नहीं नहीं, आप डिजर्व करती है बिल्कुल। नवनीत, आपने देखी इनकी रेस अभी, देखी पहली बार या कि क्योंकि आप लोग के अपने मैचेस चल रहे थे, इनका गोल्ड आया होगा, कैंप तो एक ही होता है, विलेज तो एक ही होता है, पता चला होगा?
3: जी हाँ जी, सोशल मीडिया पर देखी थी, लाइव तो नहीं देखी, बट सोशल मीडिया पर देखा था कि हमारा एक और मेडल आया, गोल्ड मेडल आया है, तो बहुत खुशी होती है उस टाइम पे कि देखते रहते हैं हम सब भी कि किसका मेडल आ रहा है, किस गेम में आ रहा है, तो वो सब देखा है पर सोशल मीडिया पर।
0: जैसे मैंने कहा, उसके बाद जो है गोल्ड मेडल की लाइन लगी इनके मेडल के बाद, वो होता है डिस्कस पूरे कैंप में, यार इन्होंने कर दिया अब हमको भी करना है?
3: जी हाँ जी बिल्कुल, एक दूसरे के साथ बात करते हैं एज अ टीम जब हम होते हैं कि यार उनका मेडल आ गया, उन्होंने भी गोल्ड जीता है, इनका ये वाला मेडल आया है, तो हमें भी बस लेना है यही मेडल लेना है, हमें गोल्ड ही लेना है।
0: तो गोल्ड की जहाँ तक बात हो रही है, हॉकी की बात करते हैं। मेरे लिए क्योंकि हॉकी बहुत करीब है, बेस्ट तो नहीं बोलूंगा, हर गोल्ड मेडल स्पेशल होता है, बट मेरे दिल के करीब हॉकी का गोल्ड मेडल है, वो है विमेन्स टीम का गोल्ड मेडल। क्यों? क्योंकि 44 इयर्स तक इंडिया ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था एशियन लेवल पे विमेन का, मेंस टीम ने फिर भी जीता था, विमेन्स टीम नहीं कर पा रही थी क्योंकि चाइना बहुत स्ट्रांग हो गई थी। इनफैक्ट जब ये लोग फाइनल भी खेले तो भी ये अंडरडॉग गए थे, चाइना ज़्यादा हायर रैंक टीम थी, फेवरेट भी थी जीतने के लिए, और इस टीम ने वो गोल्ड मेडल जीता। अच्छा, द टू गोल्स दैट यू सॉ, एक जो थी वो हॉकी वर्ल्ड कप का था, 5 जर्मन डिफेंडर जिनको चकमा देकर गोल मारती हैं, और उसके बाद एक डाइविंग गोल, वो नवनीति थी। दोनों गोल वन ऑफ द बेस्ट गोल्स दे वर वोटेड इन द टूर्नामेंट, वो नवनीत के। एक चीज़ सबसे पहले मैं अभी गोल देख के मेरे जहन में आई बात कि वैसे आपको देख के लगेगा नहीं इतनी जोर की हिट मारती है, कहाँ से आती है इतनी पावर?
3: वो जब इंडिया जर्सी डाली होती है तो वो पावर अपने आप आ जाती है, वो खुंदक की आज तो कुछ करके जाना है ग्राउंड पर।
0: वही पावर हमने चाइना के साथ देखी, चाइना फेवरेट था है ना, लेकिन आप लोगों ने गोल्ड मेडल जीता। क्या थी टीम की बातचीत, क्या जहन में लेकर आप मैदान पर उतरे थे?
3: एशियन गेम्स कब से दिमाग में था हमारे, इवन कि वर्ल्ड कप के टाइम पर भी हमारा फर्स्ट मैच चाइना के साथ हुआ था, तब भी एज अ टीम हमने बात की थी कि इनके साथ यहाँ खेल रहे हैं तो इस मैच में हमें अच्छा परफॉर्म करना है ताकि जब ये एशियन गेम्स में आए तो थोड़ा होमवर्क करके आए कि इंडिया कम नहीं है। एंड उस मैच में भी हम अच्छा खेले, वो मैच 2-2 ड्रॉ हुआ था हमारा वर्ल्ड कप में। एंड एशियन गेम्स के टाइम पे यही था कि हमने पूरा अच्छे से प्रिपेयर किया था, कोचेस के साथ भी वीडियोस देखे, इंडिविजुअल प्लेयर्स ने देखे एज अ टीम, एंड एज अ टीम हमने मीटिंग भी की कि हमें क्यों चाहिए ये मेडल, हर प्लेयर ने अपना रखा कि मुझे क्यों चाहिए मेडल, सब ने बात की आपस में। एंड मुझे था कि मुझे वो फीलिंग चाहिए, जैसे इन्होंने बोला कि वो नेशनल एंथम की, मेरी थर्ड एशियन गेम्स थी, मेरे पास सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, तो वो गोल्ड वाली फीलिंग चाहिए थी। एंड उसके साथ यही था कि टीम्स के सबके एक एक अपने पर्सनल गोल्स थे जो सबने शेयर किए, एंड एज अ टीम हमने यही बोला था कि ग्राउंड पे जब भी लगे ना कि थोड़ा थक रहे हैं या कुछ हो रहा है तो एक दूसरे को याद कर लेना बस, और वो हिम्मत तुम्हें मिल जाएगी ग्राउंड में।
0: वैसे तो आप एक दूसरे को याद कर रहे थे, एक मोमेंट आया था, इंडिया वर लीडिंग 1-0 वर्सेस चाइना और चाइना को मिलता है पेनल्टी स्ट्रोक. आपको पता है हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक मतलब ऑलमोस्ट गोल है, 90% आई थिंक कन्वर्जन रेट होता है. मुझे भी लगा गोल होगा, पर हमारी जो वॉल है सविता वो हमारे अभी यहाँ नहीं है गोलकीपर, उन्होंने वो सेव कर दिया. एज आई सेड 1 in 10 शॉट सेव होते हैं और उन्होंने वो सेव किया. मुझे तो चक दे मूवी की याद आ गई थी, वो होता था ना फाइनल, वो लेफ्ट जाएगी राइट जाएगी नहीं ये तो सीधा है ना, वहाँ भी प्लेयर्स थे या कोच हैं वो टिप देते हैं. आप उस वक्त देख रही थी, लगा था कोई चांस है वो गोल बचाएंगी?
3: जी हाँ जी, हमें पूरा बिलीव था उनके ऊपर, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैच से पहले हम जो प्लान करके गए थे तो गोलकीपर्स को भी दिखाया गया था कि दूसरी टीम की वो कैसे स्ट्रोक लेती है प्लेयर, एंड उस टाइम पे था ये बिलीव कि सविदी को पता है कि वो कहाँ मारती है मोस्टली, तो वो कर लेंगे सेव. एंड वो सेव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए. आई थिंक वहाँ से एक और टर्निंग पॉइंट हुआ कि टीम ने सोचा अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, एक गोल किया तो उसको बचा कर रखेंगे.
0: ये गोल्ड से आप ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई कर चुके हैं, एलए ओलंपिक्स में अब इंडियन वुमेन्स टीम जाएगी. लास्ट टाइम मिस आउट कर गए थे, क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, मेंस टीम गई थी और मेंस टीम मेडल भी लेके आई. आप उससे पहले वाले ओलंपिक्स में थे, एक ओलंपिक बीच में मिस हो गया, अब कैसा महसूस हो रहा है कि अब आप जा रहे हैं, एलए का टिकट मिल चुका है आपको?
3: जी हाँ जी, अच्छा महसूस हो रहा है, बट हमें याद है कि जब हमने पेरिस मिस किया था क्वालिफायर्स में, क्योंकि एशियन गेम्स के बाद क्वालिफायर्स होते हैं, अगर एशियन में गोल्ड नहीं आता तो एंड काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी होता है टीम के ऊपर. बट आई थिंक कहीं ना कहीं वो बात भी हमारे दिमाग में थी कि हम पेरिस में नहीं जा पाए तो इस बार हमें एशियन गेम्स से ही क्वालिफाई करना है, ताकि ऑलरेडी हम वो टिकट पक्की कर लें कि हमें जाना ही है और उसकी प्रिपरेशन करें, एंड वो चीज़ टीम ने की.
0: एक चीज़ अब मैं आप तीनों से पूछूंगा कि जो एशियन गेम्स से सामने भी आए, मुझे कोई सरप्राइज भी नहीं हुआ कि इंडियन वुमेन जो थी वो इंडियन मेन से आगे निकल गई है ना. जो हमारे 21 गोल्ड आए हैं, 14 जो थे उसमें लड़कियों का योगदान था. वंस अगेन जो औरतें हैं उन्होंने हमारी है ना नाक कटने से बचा ली. आप तीनों से जानना चाहता हूँ, क्या है ये इंडियन वुमेन की ये जो ताकत है, कहाँ से आती है? क्योंकि देखिए सोसाइटी सवाल भी खड़े करती है कहाँ से आती है. आप तीनों
1: ये
0: से जानना,
1: जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाया हो ना नारी शक्ति, तो हाँ. हमने वो प्रूफ कर दिया नारी शक्ति. तो वहीं से ही आया है कि लड़कों को ज्यादा लोग, मतलब ऐसे होता है पेरेंट्स भी लड़कों को ज्यादा छूट देते हैं कि उनको ज्यादा कि बाहर जाने की छूट मिलती है, हमें लड़कियों को इतनी नहीं मिलती, घर के काम भी करने पड़ते हैं, उनको कोई बोलता भी नहीं करने के लिए, वो करते भी नहीं तो उनको गुस्सा भी नहीं करते मम्मी पापा. तो क्या होता है कि हमें करने पड़ते हैं वो काम, घर के बर्तन वगैरह जो भी काम होते हैं घर में. तो ऐसा होता है कि अगर उनको इतनी फ्रीडम है और हमें अगर उतनी ज़्यादा, अगर हमें फ्रीडम मिले तो अभी आप देखो लड़कियां कम गई हैं एशियन गेम्स में, और लड़कों के अकॉर्डिंग लड़कियां कम गई हैं, तो मेडल लड़कियों के बराबर आए हैं, तो इसमें भी हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है. तो मैं मुझे ये लगता है कि अगर माँ बाप सब लड़कियों को बाहर जाने की ऐसे अनुमति देंगे कि आप जाओ हम तुम्हारे साथ हैं, तो और बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो बाहर निकल के आएंगी. और उससे हमारा क्या है कि एक अगर किसी कंट्री में अगर किसी की माँ, मतलब जैसे लड़कियाँ होती हैं मम्मी बनती है जो भी है, तो अगर माँ स्ट्रोंग होगी तो बच्चा भी स्ट्रोंग होगा. ये होता है क्योंकि 75% हमारी जो बॉडी में होता है ना, तो माँ के थ्रू आता है. तो मैं ये चाहती हूँ, मतलब पेरेंट्स से बोलना यहाँ के थ्रू, कि आप अपनी लड़कियों को भी उतना ही बढ़ावा दो जितना आप लड़कों को देती है. ऐसा नहीं कि ज़्यादा दो, बट उतना तो दो कम से कम, तो जिससे लड़कियाँ स्ट्रोंग बने और हमारा एक जैसे हमारी कंट्री है वहाँ, इसमें लड़कियाँ स्ट्रोंग बने और हमारी नारी शक्ति जो चलाया हुआ है वो एक अच्छे लेवल पे साबित हो कि नारी शक्ति अभी भी है.
0: नहीं नहीं, जिसकी भी शादी हुई है वो तो बताएगा ही नारी शक्ति ज़्यादा है, उसने तो पिटाई खाई है, तो नारी शक्ति उसको पता है हमेशा से ज़्यादा ही है. बताए,
2: मैं यही बोलना चाहूँगी, अभी प्राची दीदी ने बोला नारी शक्ति.
0: वैसे एक चीज़ मैं बताऊँगा किरण के बारे में, आप ये जो इन्होंने कहा ना हम जो एक्स्ट्रा काम करते हैं, आप में से शायद बहुत लोगों को नहीं पता, किरण ने एक्स्ट्रा काम करके अपने एथलेटिक्स करियर को फाइनेंस भी किया. उनके पास पैसे नहीं थे कभी नेशनल्स के लिए टिकट, जो नेशनल भी आप पार्टिसिपेट करते हो आपको पैसे देने पड़ते हैं, इनके पास स्पाइक्स के लिए भी पैसे नहीं थे. आप बताइए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, ये एक स्टोर में पतंजलि के स्टोर में काम भी करती थी पूरे दिन, वहां से जो पैसे कमाती थी उससे अपनी डाइट पूरी करके ताकि मैं दौड़ पाऊं वो करती थी। तो जो लड़की वो करेगी उसको आप रोक ही नहीं सकते, बताएं।
2: वो किस्सा मैं आपको बताती हूँ। पहले तो मुझे घर से जाने का परमिशन ही नहीं था, मेरे को ट्रेनिंग नहीं करने दिया जाता था। ऐसे ही गाँव में होती हैं वो चीज़ें, आज भी हैं। मुझे किसी गांव वाले एक अंकल ने आके मेरे फादर को बोला कि तुम्हारी लड़की तो ठीक नहीं है, किसी लड़के से खड़े होकर बात कर रही थी। पहले ऐसे ही माना जाता था, तो मेरे फादर ने मेरा ट्रेनिंग बंद करवा दिया था कुछ टाइम के लिए। मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन घर वाले नहीं माने। लास्ट में मैंने सोचा ऐसे तो काम नहीं चलेगा किरण, मैंने बोला कि अगर तुम मुझे खेलने नहीं दोगे तो मैं ना तो पढ़ूंगी और ना मैं खाना खाऊंगी। मैंने ऐसे कंटिन्यू काफ़ी टाइम तक रखा, तब घर वालों ने मेरे को बोला कि ठीक है। पर उस टाइम पे मेरा फाइनेंशियली कंडीशन अच्छा नहीं था, तो मैंने सुबह ट्रेनिंग करती थी और दिन में 9 से 5 में जॉब करती थी पतंजलि स्टोर पे। उसके बाद फिर मैं शाम को ट्रेनिंग करती थी, वो मुझे कुछ 4-5 हज़ार रुपये मिलते थे, उसमें मैं अपना रेंट भी देती थी और खाना भी खाती थी। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, वहाँ से जो मैंने मतलब अपनी लाइफ का जो स्ट्रगल शुरू किया, उस टाइम पे मैंने सोच लिया था कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, क्योंकि अब मैं बाहर निकल के आई हूँ, ऐसे तो वापस नहीं जाऊँगी घर पे। ऐसे लाइफ में और भी ऐसे काफ़ी अप एंड डाउन आए हैं, इंजरीज वगैरह भी हुई हैं। और ये अभी प्राची दीदी ने बताया कि लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं है, होगा, देख लेंगे, एक ना एक दिन वापस ही आएगी बैग उठा के गाँव में। और अभी मैंने 2024 में पेरिस में ओलंपिक में क्वालिफाई किया था इंडिविजुअल, और अपना पर्सनल बेस्ट दिया था 50.92, और मेरा मीट रिकॉर्ड है इंटरस्टेट में आज भी। तब भी काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला था कि कोई नहीं, ये तो तुक्का लग गया है तेरा, देखते हैं अगली बार तू क्या करेगी। पर मेरे को उनको जवाब देना मैंने ज़रूरी नहीं सोचा, मुझे लगा कि मुझे बोल के नहीं, मुझे कुछ करके जवाब देना है। और अभी आपने देखा ही, जैसे अभी एशियन गेम्स में हमने गोल्ड अचीव किया, तो शायद मुझे जवाब देने का जरूरत नहीं पड़ा, वो जवाब उनको खुद मिल गया।
0: वो बिल्कुल आपने वो ट्रैक पे दिया है। ज़्यादा समय नहीं हमारे पास, लेकिन आपसे भी जानना चाहूँगा एक और चीज़ को लेकर, क्योंकि नारी शक्ति की बात हो रही है, विमेन सेफ्टी के बारे में। मतलब जब आप खेलते हो बचपन से, हर लेवल पे खेलते हो, आपको लगता है कि एक एक, एक लड़की के लिए एनवायरनमेंट ठीक है खेलना, उसकी सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी, क्योंकि हर पहलू से आपको इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, मेल कोचेज होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उसके बारे में आप चाहेंगे कुछ, अभी हालात क्या हैं, उसको बेहतर किया जा सकता है?
3: जी हाँ जी बिल्कुल, कि सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली क्या होता है, समटाइम्स ये होता है कि आपस में भी कई चीज़ें बन जाती हैं कि पता नहीं इसको ही क्यों चांस मिल रहा है, शायद कोच की फेवरेट होगी, ऐसे वैसे। बट आई थिंक अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, अगर हमारी टीमें भी देखें तो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है इन सब चीज़ों के लिए। और इसके लिए स्पेशल से अभी हॉकी इंडिया की तरफ से भी रखा जाता है कि जो हमारे फिजियोज होते हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें सेफ नहीं लग रहा, तो वो उनसे जाके बात कर सकते हैं। तो आई थिंक वो एक अच्छा इनिशिएटिव है कि आपकी टीम के अंदर ही कोई ऐसा फीमेल हो जो आपकी बात सुन सके, जिनके साथ आप बात कर सके। आई थिंक बाकी स्पोर्ट्स में भी ये सब चीज़ें होंगी, तो वो उससे थोड़ा ये है कि सभी प्लेयर्स के लिए सेफ फील करते हैं। एंड बाकी एज अ सीनियर प्लेयर्स हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो हमारे यंगस्टर्स आ रहे हैं जूनियर्स की, वो हमारे साथ कंफर्टेबल रहें, अगर उन्हें कुछ ऐसा फील हो रहा है तो वो हमसे भी बात कर सकते हैं।
0: जाते जाते, क्योंकि आपने कुछ समय पहले ही एक अपील करी थी विमेंस लीग को लेकर, इंडियन जो विमेंस हॉकी लीग है वो हुई है लेकिन अब नहीं हो पा रही क्योंकि काफ़ी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, आपके पास प्लेटफॉर्म है, जाते जाते अगर आप कुछ बोलना चाहो, क्या पता यहाँ पर कोई हो जो इस चीज़ को उठा ले और आपकी विमेंस लीग को पॉसिबल कर पाए।
3: जी हाँ जी बिल्कुल, इस मेडल से ये भी एक हमारा टारगेट था कि हमारी हॉकी इंडिया लीग स्टार्ट हुई थी, जो कि 2 बार हुई है, बट अभी पता नहीं होगी या नहीं होगी। तो हम पूरी टीम ने रिक्वेस्ट की थी कि जितना ज़्यादा हो सके स्पॉन्सर्स आए हमारी लीग के लिए, क्योंकि बहुत बेनिफिट होता है इससे। जैसे हम अभी मेडल लेकर आए हैं, वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो उसका कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा लीग से मिला है कि जो हमारे यंग प्लेयर्स हैं वो लीग खेले और उन्हें वो एक्सपीरियंस मिला है वहाँ से। एंड आई थिंक आगे की जनरेशन के लिए भी अच्छा है कि वो लीग खेलेंगे और वो एक्सपीरियंस लेंगे वहाँ से, तो वो हमारे इंडिया के लिए बेनिफिट होता है, इंडिया टीम के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर भी जो हैं या जो भी मुझे सुन रहे हैं, कि आप स्पॉन्सर्स लेकर आएँ ताकि हमारी लीग हो सके।
0: Okay, on that note, I hope this platform can be that mode through which that league happens. Once again, ladies and gentlemen, a big round of applause to our gold medal winners at the Asian Games 2024. Kiran, Prachi and Navneet.

0: साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
1: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड,
2: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
3: एक परिवार, अटूट भरोसा।

0: कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति को सड़क की लड़ाई में घसीटने का प्रयास किया गया, मगर एक नालायक नेता ने राष्ट्रपति महोदया को सड़क की लड़ाई में घसीटने की कोशिश की है। द एनार्किस्ट राहुल गांधी ट्राइड टू पुल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द एनार्किज्म विच ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू कंडक्ट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया, ये कहते हुए कि हम कल कुछ वोट चोरी के विषय को लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गए थे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी मान गई कि हम जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। अब देखिए, बेसिक प्रोटोकॉल भी राहुल गांधी को समझ में नहीं आता है कि आप कोई मेमोरेंडम लेके जाते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट्स द मेमोरेंडम, ये बेसिक प्रोटोकॉल है भारत के संविधान का, भारत के लोकतंत्र का, इसीलिए तो भारत का लोकतंत्र विराट है। मगर आपने कहा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसी सांस में कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कुछ एविडेंस है तो वो भी दीजिए। क्यों एविडेंस क्यों नहीं लेके गए थे? एविडेंस होगा तभी तो लेके जाएंगे।
1: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे।
2: Very good evening, viewers. Welcome back. You're watching India Today with me, Sriya Kundu, where we're tracking all of the big stories coming in at the top of this very hour, starting with the headlines first. Big order by the Supreme Court on Delhi shutdown orders, restoration of metro, rail and internet services, direct review of barricading rules, top court fines, contempt and detention serves notices to Home Secretary, Delhi top cop and metro chiefs. Meanwhile, CJP's core team released after over 20 hours of preventive detention. Abhijit Deepke, Saurav Das, Ashutosh Ranka told to maintain peace for a year. CJP founder vows to resume agitation, says that CJP hadn't signed any bond, promising not to protest. Delhi police sets the record straight, accuses CJP leaders of not following the laws, releases videos of cops informing Abhijit Deepke on his grandmother's demise, says he refused to speak to his family. United Nations body condemns Delhi detentions and curbs, says they are concerned by the crackdown. India hits back and calls remarks as unwarranted interference in the country's internal affairs and more so selective interference into a country's affairs. Prime Minister flags off new stretch of Chennai Metro, takes a ride with Chief Minister Vijay. Prime Minister says he will work with Chief Minister Vijay for the welfare of the state. PM Modi also addresses students in Chennai, asserts that Yuva Shakti powers Viksit Bharat.
3: ये जो excitement है, मैं उसे महसूस कर रहा हूँ। मुझे आप सबकी आँखों में भारत का भविष्य दिखाई दे रहा है।
2: Dramatic escalation in West Asia. Saudi Arabia's Riyadh airport struck for a third time in a week. At least 12 people killed and over 300 injured. Flight operations suspended. US President Donald Trump says considering joining forces with Saudi Arabia.

0: कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति को सड़क की लड़ाई में घसीटने का प्रयास किया गया, मगर एक नालायक नेता ने राष्ट्रपति महोदया को सड़क की लड़ाई में घसीटने की कोशिश की है। द एनार्किस्ट राहुल गांधी ट्राइड टू पुल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द एनार्किज्म विच ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू कंडक्ट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया, ये कहते हुए कि हम कल कुछ वोट चोरी के विषय को लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गए थे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी मान गई कि हम जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। अब देखिए, बेसिक प्रोटोकॉल भी राहुल गांधी को समझ में नहीं आता है कि आप कोई मेमोरेंडम लेके जाते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट्स द मेमोरेंडम। ये बेसिक प्रोटोकॉल है भारत के संविधान का, भारत के लोकतंत्र का, इसीलिए तो भारत का लोकतंत्र विराट है। मगर आपने कहा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसी सांस में कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कुछ एविडेंस है तो वो भी दीजिए। क्यों एविडेंस क्यों नहीं लेके गए थे? एविडेंस होगा तभी तो लेके जाएंगे।
1: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे।

0: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है, ये है एक लेगेसी।
1: यू नो डिजाइंस कितने हैं? लाख से भी ज्यादा डोर,
2: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
3: एक परिवार, अटूट भरोसा।

0: कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति को सड़क की लड़ाई में घसीटने का प्रयास किया गया, मगर एक नालायक नेता ने राष्ट्रपति महोदया को सड़क की लड़ाई में घसीटने की कोशिश की है। द एनार्किस्ट राहुल गांधी ट्राइड टू पुल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द एनार्किज्म विच ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू कंडक्ट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया, ये कहते हुए कि हम कल कुछ वोट चोरी के विषय को लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गए थे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी मान गई कि हम जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। अब देखिए, बेसिक प्रोटोकॉल भी राहुल गांधी को समझ में नहीं आता है कि आप कोई मेमोरेंडम लेके जाते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट्स द मेमोरेंडम, ये बेसिक प्रोटोकॉल है भारत के संविधान का, भारत के लोकतंत्र का, इसीलिए तो भारत का लोकतंत्र विराट है। मगर आपने कहा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसी सांस में कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कुछ एविडेंस है तो वो भी दीजिए। क्यों एविडेंस क्यों नहीं लेके गए थे? एविडेंस होगा तभी तो लेके जाएंगे।
1: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे।

0: साथियों, आज का भारत होता है, चलता है, ऐसे ही चलेगा, उस मानसिकता से बाहर निकल चुका है। दोस्तों, आज का भारत की पहचान है करना है, करना ही है और समय पर करना है।
1: यह देश कभी जमीन का भूखा नहीं रहा। इस देश ने कभी भी दुनिया में कहीं आक्रमण नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी किसी और के लिए 1.5 लाख से ज्यादा हमारे जवान प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हो गए। 1.5 लाख संख्या कम नहीं होती, लेकिन हम भारतीय उन शहीदों के साथ जुड़ करके विश्व को हमारे इतने बड़े बलिदान का एहसास नहीं करा पाए।
2: खेल व्यक्तित्व के विकास के लिए भी बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में खेल का महत्व बहुत है। देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। अगर हमारे परिवार में भी बच्चों को खेल की रुचि है तो उनको अवसर देना चाहिए।
3: सदी में दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, इतनी बात से चलने वाला नहीं है। 21वीं सदी की आवश्यकताएं अलग है, 21वीं सदी की स्थितियां अलग है। वो एक वक्त था लेबरर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, आज वक्त है लेबरर्स यूनाइट द वर्ल्ड। ये बदलाव इस मंत्र के साथ आज दुनिया को जोड़ने की जरूरत है।

0: are watching India Today.
1: So where are we standing at this given point when we speak of the protest? Well, Delhi's protest politics, it's all taking a sharp turn. What began as a street mobilization over alleged electoral roll irregularities has now triggered a wider face-off over the police response, the right to protest and the opposition's next move. With a CGI reportedly declining to meet the opposition leaders on Monday, that is October 12th, and those detained now released, spotlight shifts to what happens next. Here's a report summarizing all of the details for you till now.
2: Drama, detentions, and a dharna in Delhi that has triggered a political storm. The streets of the national capital have turned into a theatre of confrontation with heavy police deployment, protesting students and a crackdown that has entered its second day. The battle over alleged irregularities in electoral rolls has spilled onto the streets of Delhi. The left students' wing was up against a heavy police deployment and a crackdown for a second consecutive day. And the political showdown is now escalating.
3: It's the second day of the protest in New Delhi, and now we see the left front student have hit the street, and now they are being detained from Connaught Place. The Delhi police, CRP, even the police forces from UP have also been called in. They came here to protest. Now they're being detained. While we see the hearing that was underway at Supreme Court, it was a flash protest by the left wing, left group students. They all came out in a huge number at Connaught Place.
4: जो पुलिस है वो हिरासत में ले रही है तकरीबन 60 से 70 की संख्या है प्रोटेस्टर की इनको पुलिस ने हिरासत में लिया है सामने की तरफ देख पा रहे हैं जो आरएएफ की टीम है वो यहाँ पर तैनात है कनॉट प्लेस इलाके की ये तस्वीर है 60 से 70 एसएफआई और आईसा के लोग पहुंचे थे और इस तरह से पुलिस अगर आप देखें तो पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लेकर पुलिस जा रही है ये तस्वीरें हैं कनॉट प्लेस इलाके की
5: तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे इस समय मीडिया कर्मियों को जो है हटाया जा रहा है यहाँ पर मीडिया के साथ जो है धक्का मुक्की की जा रही है आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर अफड़ा दफड़ी भागा दौड़ी का जो है माहौल बन चुका है आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान हैं जॉन ब्रिटास को डिटेन कर रहे हैं मेंबर पार्लियामेंट हैं कम्युनिस्ट पार्टी से तो तस्वीरें कनॉट प्लेस की साफ बयां कर रही हैं कि कैसे यहाँ पर इस समय जो हालात हैं वो हो रखे हैं आप देख सकते हैं भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान हैं यहाँ पर तैनात किए गए हैं
2: More than 20 hours in detention, followed by release on bond, but the confrontation is far from over. CJP leaders Abhijit Dibke, Saurav Das and Ashutosh

0: are watching India Today.
1: So where are we standing at this given point when we speak of the protest? Well, Delhi's protest politics, it's all taking a sharp turn. What began as a street mobilization over alleged electoral roll irregularities has now triggered a wider face-off over the police response, the right to protest and the opposition's next move. With a CGI reportedly declining to meet the opposition leaders on Monday, that is October 12th, and those detained now released, spotlight shifts to what happens next. Here's a report summarizing all of the details for you till now.
2: Drama, detentions, and a dharna in Delhi that has triggered a political storm. The streets of the national capital have turned into a theatre of confrontation with heavy police deployment, protesting students and a crackdown that has entered its second day.
3: The visuals, you can see that...
2: The battle over alleged irregularities in electoral rolls has spilled onto the streets of Delhi. The left students' wing was up against a heavy police deployment and a crackdown for a
4: It's the second day from Connaught Place. The Delhi Police, CRP, even the police forces from UP have also been called in. They came here to protest. Now they're being detained. While we see the hearing that was underway at Supreme Court, it was a flash protest by the left wing, left group students. They all came out in a huge number at Connaught Place.
5: जो पुलिस है वो हिरासत में ले रही है तकरीबन 60 से 70 की संख्या है प्रोटेस्टर की इनको पुलिस ने हिरासत में लिया है सामने की तरफ देख पा रहे हैं जो आरएएफ की टीम है वो यहां पर तैनात है कनॉट प्लेस इलाके की ये तस्वीर है 60 से 70 एसएफआई और आईसा के लोग पहुंचे थे और इस तरह से पुलिस अगर आप देखें तो पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लेकर पुलिस जा रही है ये तस्वीरें हैं कनॉट प्लेस इलाके की
6: तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे इस समय मीडिया कर्मियों को जो है हटाया जा रहा है यहां पर मीडिया के साथ जो है धक्का मुक्की की जा रही है आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर अफड़ा दफड़ी भागा दौड़ी का जो है माहौल बन चुका है आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान हैं जॉन ब्रिटास को डिटेन कर रहे हैं मेंबर पार्लियामेंट हैं कम्युनिस्ट पार्टी से तो तस्वीरें कनॉट प्लेस की साफ बयां कर रही हैं कि कैसे यहां पर इस समय जो हालात हैं वो हो रखे हैं आप देख सकते हैं भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान हैं यहां पर तैनात किए गए हैं
2: More than 20 hours in detention, followed by release on bond, but the confrontation is far from over. CJP leaders Abhijit Dibke, Saurav Das and Ashutosh Ranka were released after a surety bond of 50,000 rupees each was furnished, with a condition to maintain peace and good behaviour for 1 year. YouTuber Dhruv Rathi, detained in Gurugram ahead of the Cockroach Janata Party protest, was also released in the early hours. But release has not meant retreat. The CJP leaders have hit back at the Modi government, turning their detention into a fresh political flashpoint.
7: मैंने कोई बॉन्ड साइन नहीं किया है फिर से रस्ते पर उतरेंगे या अमित शाह और मोदी जैसे लोगों से हम डरेंगे नहीं एक बार नहीं 100 बार जेल में डालो

0: are watching India Today.
1: So where are we standing at this given point when we speak of the protest? Well, Delhi's protest politics, it's all taking a sharp turn. What began as a street mobilization over alleged electoral roll irregularities has now triggered a wider face-off over the police response, the right to protest and the opposition's next move. With a CGI reportedly declining to meet the opposition leaders on Monday, that is October 12th, and those detained now released, spotlight shifts to what happens next. Here's a report summarizing all of the details for you till now. Drama, detentions, and a dharna in Delhi that has triggered a political storm. The streets of the national capital have turned into a theatre of confrontation with heavy police deployment, protesting students and a crackdown that has entered its second day. The battle over alleged irregularities in electoral rolls has spilled onto the streets of Delhi. The left students' wing was up against a heavy police deployment and a crackdown for a second consecutive day. And the political showdown is now escalating.
2: It's the second day of the protest in New Delhi, and now we see the left front student have hit the street, and now they are being detained from Connaught Place. The Delhi police, CRP, even the police forces from UP have also been called in. They came here to protest. Now they're being detained. While we see the hearing that was underway at Supreme Court, it was a flash protest by the left wing, left group students. They all came out in a huge number at Connaught Place.
3: जो पुलिस है वो हिरासत में ले रही है तकरीबन 60 से 70 की संख्या है प्रोटेस्टर की इनको पुलिस ने हिरासत में लिया है सामने की तरफ देख पा रहे हैं जो आरएएफ की टीम है वो यहाँ पर तैनात है कनॉट प्लेस इलाके की ये तस्वीर है 60 से 70 एसएफआई और आईसा के लोग पहुंचे थे और इस तरह से पुलिस अगर आप देखें तो पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लेकर पुलिस जा रही है ये तस्वीरें हैं कनॉट प्लेस इलाके की
4: तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे इस समय मीडिया कर्मियों को जो है हटाया जा रहा है यहाँ पर मीडिया के साथ जो है धक्का मुक्की की जा रही है आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर अफड़ा दफड़ी भागा दौड़ी का जो है माहौल बन चुका है आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान हैं जॉन ब्रिटास को डिटेन कर रहे हैं मेंबर पार्लियामेंट हैं कम्युनिस्ट पार्टी से तो तस्वीरें कनॉट प्लेस की साफ बयां कर रही हैं कि कैसे यहाँ पर इस समय जो हालात हैं वो हो रखे हैं आप देख सकते हैं भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान हैं यहाँ पर तैनात किए गए हैं
5: More than 20 hours in detention, followed by release on bond, but the confrontation is far from over. CJP leaders Abhijit Dibke, Saurav Das and Ashutosh Ranka were released after a surety bond of 50,000 rupees each was furnished, with a condition to maintain peace and good behaviour for 1 year. YouTuber Dhruv Rathi, detained in Gurugram ahead of the Kokro Janta Party protest, was also released in the early hours. But release has not meant retreat. The CJP leaders have hit back at the Modi government, turning their detention into a fresh political flashpoint.
6: मैंने कोई बॉन्ड साइन नहीं किया है फिर से रस्ते पर उतरेंगे या अमित शाह और मोदी जैसे लोगों से हम डरेंगे नहीं एक बार नहीं 100 बार जेल में डालो तुम तुम्हारी तानाशाही से डरते नहीं तुम्हारी तानाशाही का अंत करके रहेंगे
7: मैं इस सरकार को चेतावनी देना चाह रहा हूं कि हिस्ट्री इज विटनेस टू दिस कि किसी भी सरकार ने अगर गुरुद्वारों के साथ सिखिज्म के साथ ऐसा मजाक किया है ऐसा बर्बरता किया है वो सरकार का ज्यादा लंबा टाइम नहीं बचा
5: The opposition too is refusing to back down. Congress President Mallikarjun Kharge and AAP leader Arvind Kejriwal have joined the political pushback with the message that police action will not end the fight.

0: Roll irregularities has now triggered a wider face-off over the police response, the right to protest and the opposition's next move. With a CGI reportedly declining to meet the opposition leaders on Monday, that is October 12th, and those detained now released, spotlight shifts to what happens next. Here's a report summarising all of the details for you till now.
1: Drama, detentions, and a dharna in Delhi that has triggered a political storm. The streets of the national capital have turned into a theatre of confrontation with heavy police deployment, protesting students and a crackdown that has entered its second day.
2: The visuals, you can see that...
1: The battle over alleged irregularities in electoral rolls has spilled onto the streets of Delhi. The left students' wing was up against a heavy police deployment and a crackdown for a second consecutive day. And the political showdown is now escalating.
3: It's the second day of the protest in New Delhi, and now we see the left front student have hit the street, and now they are being detained from Connaught Place. The Delhi police, CRP, even the police forces from UP have also been called in. They came here to protest. Now they're being detained. While we see the hearing that was underway at Supreme Court, it was a flash protest by the left wing, left group students. They all came out in a huge number at Connaught Place.
4: जो पुलिस है वो हिरासत में ले रही है तकरीबन 60 से 70 की संख्या है प्रोटेस्टर की इनको पुलिस ने हिरासत में लिया है सामने की तरफ देख पा रहे हैं जो आरएएफ की टीम है वो यहां पर तैनात है कनॉट प्लेस इलाके की ये तस्वीर है 60 से 70 एसएफआई और आईसा के लोग पहुंचे थे और इस तरह से पुलिस अगर आप देखें तो पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लेकर पुलिस जा रही है ये तस्वीरें हैं कनॉट प्लेस इलाके की
5: तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे इस समय मीडिया कर्मियों को जो है हटाया जा रहा है यहाँ पर मीडिया के साथ जो है धक्का मुक्की की जा रही है आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर अफड़ा दफड़ी भागा दौड़ी का जो है माहौल बन चुका है आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान हैं जॉन ब्रिटास को डिटेन कर रहे हैं मेंबर पार्लियामेंट है कम्युनिस्ट पार्टी से तो तस्वीरें कनॉट प्लेस की साफ बयां कर रही है कि कैसे यहाँ पर इस समय जो हालात हैं वो हो रखे हैं आप देख सकते हैं भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान हैं यहाँ पर तैनात किए गए हैं
1: More than 20 hours in detention, followed by release on bond, but the confrontation is far from over. CJP leaders Abhijit Dibke, Saurav Das and Ashutosh Ranka were released after a surety bond of 50,000 rupees each was furnished, with a condition to maintain peace and good behaviour for 1 year. YouTuber Dhruv Rathi, detained in Gurugram ahead of the Cockroach Janata Party protest, was also released in the early hours. But release has not meant retreat. The CJP leaders have hit back at the Modi government, turning their detention into a fresh political flashpoint.
6: मैंने कोई बॉन्ड साइन नहीं किया है फिर से रस्ते पर उतरेंगे या अमित शाह और मोदी जैसे लोगों से हम डरेंगे नहीं एक बार नहीं 100 बार जेल में डालो तुम्हारी तानाशाही से डरते नहीं तुम्हारी तानाशाही का अंत करके रहेंगे
7: मैं इस सरकार को चेतावनी देना चाह रहा हूं कि हिस्ट्री इज विटनेस टू दिस कि किसी भी सरकार ने अगर गुरुद्वारों के साथ सिखिज्म के साथ ऐसा मजाक किया है ऐसा बर्बरता किया है वो सरकार का ज्यादा लंबा टाइम नहीं बचा
1: The opposition too is refusing to back down. Congress President Mallikarjun Kharge and AAP leader Arvind Kejriwal have joined the political pushback with the message that police action will not end the fight.
8: We're agitating, but suddenly it is even in emergency such things did not happen. In emergency we all were ministers. No trains were stopped, no flights were stopped, nothing. The people really used to move.
1: From detention to conditional release, from police barricades to political counterattacks, Delhi streets have become the latest battleground in the fight over alleged irregularities in electoral rolls. With Anmol Bali, Arvind Ocha and Ashutosh Mishra, Bureau Report, India Today.